You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:06 हो रहे हैं और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए और याद दिलाने के लिए कि वाह मुझे मॉर्निंग सिर्फ गुड नहीं, बिंदास होनी चाहिए। और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पे बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर आपके लिए प्यारे प्यारे गाने भी हम जो है प्ले करेंगे।

0: और उसके साथ साथ सोचिए पूरा स्पेक्ट्रम कवर करने के लिए हम गाने लेकर आए हैं।
1: आज मैंने भोई कप की पारी रख ली है।
0: वाई वाई वाई। मतलब प्यार से लेके ब्रेकअप तक हर चीज जो है आज हम कवर करेंगे, मगर शो की शुरुआत करेंगे क्यूट गाने के साथ। देखो भाई, कितना भी कुछ कहो मगर प्यार में जो मजा है, प्यार में जो नशा है, प्यार में जो एक एनर्जी इंसान को मिलती है, वो शायद ही किसी चीज में मिलती है। और वो प्यार की बात जब मैं करता हूं तो ऐसा नहीं कि किसी इंसान से प्यार करना है। प्यार का जो इमोशन है वो हमें बहुत सारी चीज़ों से लगता है। हमें खाने से लगाव होता है, हमें गाड़ी से लगाव होता है, हमें किताबों से प्यार होता है, हमें जिंदगी से तक प्यार हो सकता है। बस प्यार करो, प्यार बांटो, आगे बढ़ो और कहते रहो जियो बिंदास। और हाँ भाई, अपना भी प्यार बांटिए जरा, मैसेज कीजिए मुझे 3311063 पर अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड मॉर्निंग कोड्स, बताइए आज क्या क्या करने का इरादा है। स्टे ट्यून्ड।

0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक.
2: अरमान मलिक.
3: मैं नंबर वन.
4: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: क्या होता जो राज के पुकारने पे सिमरन ना पलट? वैसे ही क्या होता जो सुबह नाश्ते के लिए मम्मी तवे पर रखा पराठा ना पलटती? भाई साहब सही जगह पर पलटना बहुत जरूरी है. अब पलटने के फायदे और नुकसान क्या है पता चलेगा बहुत जल्द.
0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
8: बिंदास मॉर्निंग.
9: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
0: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
10: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: मिस्टर एंड मिसेस माही मूवी का गाना हमने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:17 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास मैसेजेस आए हैं। नाजनी जी का मैसेज आया है, लिखा है, गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ फैंटास्टिक डे अहेड filled with endless opportunities and positive energy. Thank you so much. Thank you so much. आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। जुल्फी जी का मैसेज आया है और मैसेज में लिखा है कि बैम्बू इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन ग्रास नॉट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट बट बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी। मैन्स स्ट्रेंथ लाइज इन हिज ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस एंड कमिटमेंट। गुड मॉर्निंग करके थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात कही है, बट इसमें छोटा सा चेंज मैं लेकर आऊंगा। अ पर्सन स्ट्रेंथ में बोलना चाहूंगा, सिर्फ लड़कों का ही नहीं, मर्दों का ही नहीं, हर इंसान का जो स्ट्रेंथ है वो उनके ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस और कमिटमेंट में रहता है। थैंक यू सो मच ये मैसेज मुझे भेजने के लिए। उसके साथ साथ शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है, विशिंग यू अ डे ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड मोमेंट्स दैट ब्रिंग स्माइल टू योर फेस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी प्यारा और क्यूट दिन हम विश करते हैं। फिर मुझे मैसेज आया है अबरार भाई का, उन्होंने लिखा है, द ट्रूली रिच आर दोस हु एंजॉय व्हाट दे हैव। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे पास है उसको एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना मन में बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंकफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैसेज भेजने के लिए आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। और अबरार भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी दिन जो है काफी बढ़िया और बिंदास जाए। ऐसे ही अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो जानी इंतजार किस बात का है, अभी के अभी तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले मैसेज कर दीजिए 3311063 पर। और गानों के उस पार जब हम आएंगे वापस तो एक सवाल लेकर आएंगे ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में टेस्ट करने के लिए कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं से कितने तेज हैं। ये परखने के लिए मैं तो तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? अगर हैं तो कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: तुम बिन मूवी का गाना हमने सुना सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:29 हो रहे हैं और यहाँ पे हम जो है एक सवाल लेकर आए हैं आपके साथ खेलने के लिए, ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो भाई ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में सवाल पूछने से पहले मैं जरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, ठीक है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है, फूड सेफ्टी। यस, अगर फूड सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो जिंदगी अलग अलग लेवल पे हमें जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है। तो फूड सेफ्टी जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानी जाती है, अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ ही साथ जो कॉमन लोग हैं उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि फूड को अच्छे से स्टोर करना, फूड बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है हैंड वॉश करके। बहुत सालों पहले इंडिया में एक ऐड आया था जिसमें एक बेचारा बंटी, जिसका सबने मजाक उड़ाया था धोते जाओ बोल के, ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या करके, मगर उस दिन किसी ने बंटी की वैल्यू नहीं पहचानी। मगर 2020 में जब कोरोना आया तो सबने बंटी की वैल्यू पहचानी। क्यों? क्योंकि बंटी आराम से टाइम लेके जो है हाथ धोता था। और हैंड वॉश करने के लिए उस टाइम से आपने सुना होगा कि यू हैव टू स्पेंड मिनिमम दिस मच सेकेंड्स, इतने सेकेंड तो तुम्हें हैंड वॉश करना ही है वार्म वाटर के साथ सोप ये सब लगा के। तो कितने सेकेंड तक हैंड वॉश करना होता है, मैं ऑप्शंस देता हूँ, ऑप्शंस ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है 5 सेकेंड्स, ऑप्शन बी है 10 सेकेंड्स, ऑप्शन सी है 20 सेकेंड्स। और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी सिंपल सवाल है क्योंकि हम कोविड से भी गुजरे हुए हैं तो हमको पता है कि ये सवाल जो है इसका जवाब जल्दी जल्दी मिल सकता है, बहुत जल्दी मिल सकता है। तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिए 3311063 पर। सवाल मैं एक और बार पूछता हूँ, व्हेन वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग फूड What is the minimum recommended scrubbing time? कितने टाइम तक हमें minimum recommended time होता है, कितने टाइम तक हमें अपना हाथ जो है वॉश करना है? ऑप्शन ए है 5 सेकेंड्स, ऑप्शन बी है 10 सेकेंड्स, ऑप्शन सी है 20 सेकेंड्स। बताइए हमें जल्दी जल्दी। अभी फिलहाल यहाँ पे सोनू निगम की आवाज में क्या लव स्टोरी है मूवी का गाना सुनते हैं, गुमसुम है दिल मेरा। Stay tuned, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेश। और भाई यहां पे जो है एक सवाल पूछा था मैंने ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में कि फूड सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है खाना बनाने से पहले हाथ धोना और मिनिमम रिकमेंडेड टाइम होता है हाथ धोने का। मैंने सवाल पूछा था, ऑप्शन भी दिया था और मेरे पास जो है जवाब आए हैं, तो धीरे धीरे जो है हम जवाब सुनते हैं। सरिता जी का मैसेज आया है तो चलिए वो जरा सुन लेते हैं।
1: गुड मॉर्निंग सुदेव जी, कैसे हैं आप? कैसा मॉर्निंग चल रहा है आपका? और आरजे कशिश कहाँ है? आपका जो सवाल है उसका आंसर 20 सेकंड होना चाहिए। बट हमने, मुझे याद है कि एक वर्कशॉप अटेंड किया था तो उसमें उन लोगों ने बताया था कि 30 सेकंड होना चाहिए। आई डोंट नो कि क्या राइट है, बट लेट्स सी आपका क्या आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एवरी डे डिफरेंट क्वेश्चन एंड हैव अ नाइस डे। चलिए बिंदास।
0: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक्चुअली कि आपने अप्रिशिएट किया। कशिश 10 बजे आएगी, कशिश जो है आपसे लाइफ मस्त है के लिए आएगी और थैंक यू सो मच पूछने के लिए। मैं कशिश को जरूर ये जो है आपका रिगार्ड कन्वे कर दूंगा। उसके साथ साथ मुझे ध्रुव भाई का मैसेज आया है, वो भी जरा देख लेते हैं।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज ध्रुव हियर एंड द आंसर ऑफ टुडेस क्वेश्चन इज 20 सेकंड।
0: उसके साथ साथ सृष्टि का भी मैसेज आया, सृष्टि ने भी यही लिखा है, द आंसर ऑफ टुडेस क्वेश्चन इज 20 सेकंड्स। जी हाँ, मिनिमम रिकमेंडेड टाइम जो है वो है 20 सेकंड्स। आप 30 सेकंड भी कर सकते हैं, 40 सेकंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मिनिमम रिकमेंडेड टाइम है एटलीस्ट 20 सेकंड्स करना ही करना है कहते हैं। और कोविड टाइम में जो है इस चीज के बारे में बहुत बात हुई थी और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है जवाब दिया है, सही जवाब दिया है, इसलिए यहाँ पे आप सभी के लिए फ्रेश सॉन्ग प्ले करते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एडबिन ओमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर मनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल फैल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फैल्कन फिटनेस बिन ओमरान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल
1: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:06 हो रहे हैं और यहाँ पे चलिए तापमान का हाल देख लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अभी और 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है हवा बह रही है। और मेरे मन में यही सवाल है कि क्या ये हवा मुझे पिघला तो नहीं देगी क्योंकि थोड़ी देर बाद जो गर्म हवा बहने वाली है भाई, तो जरूर ध्यान रखिएगा अपना और पानी अच्छे से पीजिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा, लाइट कलर्ड कपड़े हो सके ज्यादा पहनिएगा। और उसके साथ साथ गाड़ी में अगर बाहर जा रहे हैं गाड़ी शेड में पार्क करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ऐसे एक्सेसरीज आप खरीद सकते हैं जिससे जो है आपके गाड़ी के अंदर आने वाली रोशनी को थोड़ा ब्लॉक कर सकते हैं, विंडशील्ड ब्लॉकर होता है। उसके साथ साथ आज का जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा वो होगा 43 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट होगा 33 डिग्री सेल्सियस। और यही बात बताते हुए मैं भी एक दरखास्त करना चाहूंगा, बधाई भेज दीजिए हमें, जरा फोटोज नजारे दिखा दीजिए हमें, कैसा है बाहर, क्या है मौसम, कैसा लग रहा है आपको, 3311063 पर मैसेज करके। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, पति पत्नी और वो दो मूवी का गाना सुनते हैं गुरु रंधावा और हीर की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabat Pro. Only for 360 riyal instead of 849 riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई मुझे यहाँ पे थोड़े मैसेजेस आए हैं। संधू जी का मैसेज आया है, लिखा है कि गुड मॉर्निंग जी हरपाल संधू फ्रॉम दुकान। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन मैं विश करता हूँ। साथ ही साथ अनिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने मुझे एक बहुत ही बढ़िया एक फोटो भेजा है। मुझे लगता है शायद उनके घर के बालकनी का व्यू है, शायद सुबह सुबह उन्होंने खींचा था जो मुझे भेजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ अजय जी का मैसेज भी आया है, उन्होंने भी जो है मुझे एक फोटो भेजा है और उन्होंने शायद अपने ऑफिस के बिल्डिंग का फोटो भेजा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है, रश्मिका का मैसेज आया है, उन्होंने भी चमकता हुआ सूरज जो है भेजा एकदम। भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ऐसे फोटोज भेजते रहिए, मेरा दिल बहलाते रहिए। मैं तो कई बार बताता हूँ आपको कि हम तो स्टूडियो के अंदर बैठते हैं जी, ठीक है, चार दीवारों के अंदर है, हमें कहाँ से बाहर के नज़ारे दिखेंगे, मगर आप आंखें बंद के हमें जो है नज़ारे दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। और थोड़ी देर में जब हम आएंगे गानों के उस पार, तो आपके लिए जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप लेकर आएंगे फिट है तो हिट है में, तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कुर्सी की पेटी जो बांध रखी है आपने कसकर बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है जबरदस्त हिट। सुनते हैं गाना, बहुत प्यारा गाना है, डंकी मूवी का गाना है, अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गाने को एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: दिल दीवाना होता रहेगा, प्यार व्यार चलता रहेगा, मगर पढ़ लो बेटा मौका है, प्यार व्यार सब धोखा है। एक ही चीज जो तुम्हारी साथ देगी वो है तुम्हारी सेहत। तो सेहत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, फिट है तो हिट है में तो कुर्सी की पेटी जो आपने बांध रखी है कसके बांध लीजिए।
1: फिट है तो हिट है।
0: सारी दुनिया कहती है कि कार्ब्स वेट लॉस के लिए हमेशा बुरे होते हैं, क्या सही में ऐसा होता है? चलिए आज ये मिथ हम ब्रेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स खुद बैड नहीं होते, इश्यू जो है कार्ब के टाइप और क्वांटिटी का होता है। ठीक है, रिसर्च ये कहती है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब जो है जैसे होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है, ये सब बॉडी को स्टेडी एनर्जी देते हैं और फुलनेस जो है बॉडी का वो इंप्रूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फाइबर होता है जो डाइजेशन को स्लो कर देता है, ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है और ज्यादा देर तक हमको फुल रखता है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है रिफाइंड कार्ब्स, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, शुगरी स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्विकली डाइजेस्ट हो जाते हैं जिससे रैपिड ब्लड शुगर स्पाइक होता है, एकदम से जो है हमारे खून में शुगर उछल उछल के बढ़ जाता है, फिर वो क्रैश होता है, फिर हम थक जाते हैं, फिर हमें भूख लगती है, फिर हम फिर से खाना खाते हैं। तो वेट लॉस में मेन फैक्टर कैलोरी बैलेंस का है, लेकिन कार्ब क्वालिटी उस बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मोटी मोटी बात यही है कि भाई कार्ब्स आपके दुश्मन नहीं है, कार्ब से दुश्मनी मत करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एनर्जी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफाइंड कार्ब्स और एक्सेस इनटेक को कम करो और इनसे प्रॉब्लम को दूर करो, और धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब को प्रॉपर अमाउंट में जब खाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आप अपने गोल्स के करीब पहुंचोगे। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप अपने वेट लॉस गोल में पहुंच गए तो फिर आपका दिल करेगा। समझ गए बेटे, के और सुनिधि चौहान की आवाज में सुनते हैं कुछ तो है मूवी का गाना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात जो है, अपडेट जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। कतर में ऑथर और कंसल्टेंट मऊदी अल हजरी ने एक नया प्रपोजल दिया है जिसमें नेशनल डे फॉर रीडिंग एंड कल्चर बनाने की बात की गई है, बिल्कुल कतर के नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह। उनका आइडिया है कि जैसे स्पोर्ट्स से फिजिकल हेल्थ प्रमोट होता है, वैसे ही रीडिंग और कल्चर से मेंटल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और नॉलेज डेवलपमेंट होती है। इस दिन को ऑफिशियल हॉलीडे बनाकर लोगों को रीडिंग, रिसर्च और लर्निंग के लिए एनकरेज किया जा सकता है। उन्होंने अपने नई बुक नेशनल प्रपोजल्स के लॉन्च के साथ ही आइडिया जो है शेयर किया है, जिसका एम है सोसाइटी में सिविक एंगेजमेंट बढ़ाना और नेशनल इश्यूज पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस को प्रमोट करना। तो सिंपल वर्ड्स में बात यह है कि प्रपोजल है कि एक स्पेशल नेशनल डे बनाने को जो रीडिंग और नॉलेज को सेलिब्रेट करें, ताकि सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और लर्निंग कल्चर जो है वो स्ट्रांग हो सके। अब इस एक प्लानिंग के हिसाब से, इस प्रपोजल के हिसाब से अगर ऐसा एक डे आता है तो मैं तो बोलूंगा कि भाई बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि रीडिंग भी बहुत जरूरी है। अपने कल्चर के बारे में रीड करना, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में रीड करना, सोसाइटी में एक सिविक एंगेजमेंट का सेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा हो। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। Say wow!

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 106.3 आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबा क्लो के साथ देखे हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
1: फाल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स्थ ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ आज बिनो ब्रांड सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल. फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा. अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फाल्कन फिटनेस बिनो ब्रांड. वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल.
4: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलीनियर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
3: Salaam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff, Radio Olive, Bolo Bindas.
4: क्या होता जो राज के पुकारने पे सिमरन ना पलट ऐसे ही क्या होता जो सुबह नाश्ते के लिए मम्मी तवे पर रखा पराठा ना पलटती भाई साहब सही जगह पर पलटना बहुत जरूरी है अब पलटने के फायदे और नुकसान क्या है पता चलेगा बहुत जल्द
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई हम बात करना चाहेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के टेस्ट मैच के बारे में, जो एक वन ऑफ टेस्ट मैच है जिसका डे टू चल रहा है, सेशन वन चल रहा है। और अभी अगर हम देखें तो इंडिया का स्कोर है 433 फॉर 4 विकेट्स, और ऋषभ पंत ने 78 रन जो है स्कोर किए हैं, और जुरेल ने 8 रन स्कोर किए हैं। और इंडिया का स्कोर कार्ड अगर हम ध्यान से देखें तो यशस्वी जायसवाल ने 24 रन स्कोर किए हैं, केएल राहुल ने सेंचुरी पूरी की है 165 बॉल में, साई सुदर्शन ने भी अच्छा पारी जो है वहां पे खेला है, 104 बॉल्स में 81 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। और ऋषभ पंत भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है फर्स्ट इनिंग्स में खेले थे, फर्स्ट इनिंग्स में काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने परफॉर्म किया है। और पंत ने जो है अपनी जगह टेस्ट टीम में अच्छे से बना ली है, सॉलिडिफाई कर ली है। और अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बॉलिंग के बारे में तो यहाँ पे हमें बात करनी पड़ेगी एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर की जिनका नाम है मोहम्मद सलीम, जिन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, ज़ियाउर रहमान ने 1 विकेट लिया है। तो अच्छी तरीके से वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इंडियन बैट्समैन जो है अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं उनके ऊपर। अभी का जो अपडेट है क्रिकेट के बारे में ये है। फिलहाल यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
1: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
0: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी एकदम से एक्साइटमेंट में क्लॉक बन गया, सॉरी। स्टेशन क्लॉक में अभी 8:28 हो रहे हैं और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कतर वर्सेस एल साल्वाडोर के मैच के बारे में, जो कल एक वार्म अप मैच हुआ था जिसमें स्कोर जो है टाई रहा, 0-0 रहा। और अगर हम स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, मेनली परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, टाइमलाइन के बारे में जरा बात करेंगे, तो हमें ये देखने को मिलता है कि काफ़ी टक्कर का मैच था, ऑन स्पॉट मैच था। शॉट्स अगर हम देखें तो एल साल्वाडोर ने जो है 8 लिए हैं, कतर ने 4 लिए हैं। शॉट्स ऑन टारगेट जो है कतर के 0 हैं और एल साल्वाडोर के 2 हैं। पोजीशन में भी काफ़ी टाइट था, 51% था एल साल्वाडोर के पास और 49% था कतर के पास। और अगर हम फाउल में देखें तो 12 फाउल किए थे एल साल्वाडोर ने, 14 फाउल किए थे कतर ने। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो टाइट ही मैच हमें देखने को मिला है। कॉर्नर भी उन्हें थोड़ा ज़्यादा मिला है, मगर कतर ने भी एक इंच ज़मीन जो अपनी छोड़ी नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एल साल्वाडोर के अटैक को रेजिस्ट किया। और इसमें एक सबसे खास बात यह है कि एक इंडियन ओरिजिन प्लेयर भी है कतर की टीम में, तहसीन जमशेद, जिन्होंने 77th में जो है पिच में वो उतरे थे अक्रम अफीफ की जगह पे। और ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फिलहाल ये स्कोर है अभी, अब देखते हैं वर्ल्ड कप का कैंपेन जब शुरू होगा तो कैसा होगा, उससे रिलेटेड बातें और भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सुनिधि चौहान और अभिजीत गांगुली की आवाज में सुनते हैं, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में, सॉरी अभिजीत गांगुली नहीं, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुनते हैं गैंगस्टर मूवी का गाना। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:48 होने वाले हैं और यहां पे जो है टेक जोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया बात जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और यहां पे जो है एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आया है मेरे पास और iOS 27 के कुछ फीचर्स के बारे में है जो कुछ ही दिनों में जो है बताने वाला है एप्पल। तो मैं बता दूं आपको कि WWDC में जो है कुछ AI अपडेट्स के बारे में और iOS 27 के फीचर्स के बारे में एप्पल जो है बताने वाला है हम सबको। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ जो है मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या अपडेट्स हो सकते हैं। कुछ लीक्ड खबरें मेरे पास आई हैं। तो सबसे पहला मेजर अपग्रेड जो है वो है सीरी के बारे में। ठीक है, हम सब जानते हैं सीरी जो है काफ़ी एक अविभाज्य हिस्सा है हमारे आईफोन का या फिर iOS का। तो चैट GPT जैसा एक चैटबॉट स्टाइल सीरी आएगा जो एक स्टैंड अलोन ऐप होगा। इसमें बेटर AI अंडरस्टैंडिंग और वर्ल्ड नॉलेज जो है एक्सपेक्ट की गई है। उसके साथ साथ मल्टीपल टास्क जो है ये एक साथ कर सकेगा एंड डायनामिक आइलैंड और ऐप्स के साथ जो है इसका डीपर इंटीग्रेशन रहेगा। और फोटोज जो ऐप है उसमें AI एडिटिंग फीचर भी आएगी। एक्सटेंड फोटो को हम बाहर तक जनरेट कर सकते हैं, एनहांस ऑटोमेटिकली इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, रीफ्रेम करके फोटो एंगल या फिर पर्सपेक्टिव को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि गूगल जेमिनी से बेटर एडिटिंग सपोर्ट इसमें मिल सकता है ऐसा कहा गया है। कैमरा ऐप अपग्रेड्स भी हमें बताई गई हैं। विजुअल इंटेलिजेंस जो है और स्ट्रांग होगी। सीरी मोड एडेड इन कैमरा, कैमरा में सीरी मोड भी ऐड किया गया है। अब कैसा होगा वो सब हमें WWDC के लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद जो है आया है एप्पल वॉलेट जिसमें क्रिएट अ पास करके एक अपडेट आ रहा है। यहाँ पे कस्टम डिजिटल पासेस जो है हम बना सकते हैं, QR कोड्स, टिकट्स, ये सब हैं, हम इन पास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिम के लिए, इवेंट्स के लिए, मूवीज़ के लिए टेम्पलेट्स जो है यूज़ किया जा सकता है। एप्पल हेल्थ इंप्रूवमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो AI हेल्थ कोचिंग आ चुकी है इसमें। डॉक्टर्स के एजुकेशनल वीडियोज़ जो हैं, बेटर न्यूट्रिशन ट्रैकिंग इससे हो सकता है और पहले हेल्थ प्लस फीचर्स जो हैं अब शायद फ्री हो सकते हैं। कीबोर्ड में ऑटो करेक्ट अपग्रेड हो चुका है, सिर्फ स्पेलिंग नहीं ग्रामर सजेशंस भी दिए जाएंगे, ग्रामरली जैसा AI बेस्ड टाइपिंग हेल्प। और सफारी टैब ग्रुप्स जो हैं करेगा AI के थ्रू, टैब ग्रुप्स को ऑटोमेटिकली नेम करेंगे और कंटेंट के बेसिस पर AI इन्हें ऑर्गेनाइज करेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो iOS 27 का मेन फोकस है AI इंटीग्रेशन अक्रॉस आईफोन ऐप्स, स्पेशली सीरी को एक पावरफुल AI असिस्टेंट बनाना और ऐप्स को स्मार्ट और ऑटोमेट करना है इसका मेन उद्देश्य जो है। अब देखते हैं वो अपडेट आने के बाद कैसा होता है। फिलहाल यहाँ पे कोक स्टूडियो भारत का एक बहुत ही बढ़िया गाना सुनते हैं आदित्य रेखारी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
3: The big, big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
3: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

देखो हमारी मम्मी के भाषा में उस बंदे ने पढ़ाई की या फिर अच्छा काम किया होगा, प्यार तो नहीं किया तो फिर और सारी चीजें तो कर ही सकते हैं वैसे। मजाक कर रहा था, ठीक है। देखिए बोलने का मतलब ये है कि कभी कभी इंसान प्यार नहीं करता तो फिर क्या करता है। देखिए एक बहुत ही फेमस मुझे जो है एक गजल याद आ रहा है, उसकी एक बोली है, ये गम ना होता तो कितने गम ना होते, ठीक है। बट ये गम है और इस गम की एक अलग बात है, वो चाहिए होता है भाई। कभी कभी इंसान को जिंदगी में ऐसे कुछ गम चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत चाहिए होते हैं, बट हर प्यार गम में एंड नहीं करता है, कुछ कुछ प्यार बहुत बढ़िया तरीके से एंड करता है। तो प्यार लोग ना इंसान को मतलब प्यार वर्ड जो है इंसान को बहुत ही डिफरेंट मीनिंग में लगता है, मगर मेरा कहना यह है कि प्यार जो है एक यूनिवर्सल चीज़ है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है जिसको आप चैनलाइज करते हैं। वो आप पढ़ाई से भी प्यार कर सकते हैं, काम से भी प्यार कर सकते हैं, और आप अपने गाड़ी से प्यार कर सकते हैं, अपने खास लोग से प्यार कर सकते हैं। तो इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी, उसको हम कहाँ चैनलाइज करते हैं उसके हिसाब से हो जाता है। और प्यार नहीं किया तो सही बात है, क्या ही किया है ना। बट उससे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग एक स्पोर्ट को प्यार करते हैं, वो है फुटबॉल। और फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, 4 दिन बचे हैं। और यहाँ पे एक सवाल लेकर मैं आया हूँ, इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे और देखते हैं कि आप फुटबॉल के बारे में कितना जानते हैं, कितने पैशनेट हैं। तो सवाल यह है कि व्हाट इज द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स स्कोर्ड बाय अ प्लेयर इन अ सिंगल वर्ल्ड कप। एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले प्लेयर कौन है, वो रिकॉर्ड क्या है, वो प्लेयर कौन है वो भी बताना है, और कितने गोल उन्होंने स्कोर किए हैं वो रिकॉर्ड क्या है ये भी आपको बताना है। आप मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे पति पत्नी और वो दो मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Olive Short Break.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabat Pro. Only for 360 Rial instead of 849 Rial. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: टफ काम और भी आसान. कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्नल ग्रुप नाउ.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: This is
7: Vani Bhanushali.
8: Hey, this is Ileana
9: D'Cruz.
10: This is me, Ritik Roshan.
11: Hi, I'm Alia Bhatt.
12: Hi, I'm Vivek Anandoro, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
13: क्या होता जो राज के पुकारने पे सिमरन ना पलट, वैसे ही क्या होता जो सुबह नाश्ते के लिए मम्मी तवे पर रखा पराठा ना पलटती. भाई साहब, सही जगह पर पलटना बहुत जरूरी है. अब पलटने के फायदे और नुकसान क्या है पता चलेगा बहुत जल्द.
14: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
1: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133.

0: दीवाना दिल दीवाना यहाँ पे गाना चल रहा था और पता नहीं कोइंसिडेंस है क्या है, एकदम से तनीषा यहाँ पे चलकर आ गई और पूरी दुनिया भी तनीषा की दीवानी। तनीषा मैडम कैसे मैनेज करते हो आप इतना फैंस का प्यार जो है, बताइए।
1: बस यार कदे मान नहीं किता।
0: क्या
1: कदे मान नहीं किता?
0: अच्छा अब हिंदी में बोलो। बोलो
1: I don't know how to say that in Hindi.
0: चलो इंग्लिश में बोलो। थोड़ी बहुत पंजाबी आती है इन्हें, थोड़ी बहुत, तीन चार लाइन।
1: हर चीज मुझे थोड़ी बहुत ही आती है ना।
0: नहीं नहीं अंग्रेजी आपको अच्छे से
1: नहीं,
0: आती
1: तो
0: है
1: तो उसके लिए भी यही बोलता है।
0: बिल्कुल नहीं, मैंने कभी बोला इंग्लिश के लिए तो मैंने कभी बोला ही नहीं है। मैंने हिंदी के लिए बोला आपको कि हिंदी थोड़ी बहुत आती है। अब ऑब्वियस ही बात है, मतलब विक्टोरियन एरा अभी भी इनके मन से गया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इट्स ओके। वैसे आपके लिए एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, यू शुड वॉच ब्लैक एडर। इट्स नो थैंक यू। ये कौन सा स्लैंग है आपका?
1: ये मैंने यार आई फॉरगॉट दैट कैरेक्टर्स नेम।
0: अच्छा
1: इट्स एन इन्फ्लुएंसर।
0: ओके ओके ओके, अच्छी बात है अच्छी बात है। कोई बात नहीं, बट यहाँ पे मैंने एक सवाल पूछा था। फीफा वर्ल्ड कप जो है आ रहा है, चार दिन में जो है 2026 फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, और मैंने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब हमारे पास आया है, वो जरा देख लेते हैं। सवाल मैंने ये पूछा था कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने रिकॉर्ड बनाया था एक ही सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का, और वो नंबर ऑफ गोल्स कितने थे करके। तो मुझे मैसेज भेजा है अफताब भाई ने, उन्होंने बोला है मिहोस्लाव क्लोस फ्रॉम जर्मनी।
1: वाओ आई कांट इवन से दैट नेम।
0: एक्चुअली स्पेलिंग जो है एम आई आर ओ एस एल ए वी एन के एल ओ एस ई है, ठीक है, बट आई गेस जर्मन में आर को शायद वो हो बोलते होंगे, मे बी, क्योंकि मैंने विकिपीडिया में उसका प्रोनाउंसिएशन सुना था इसलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे आता है, अब गलत मत समझ आ गया। और सुदेव को जर्मन भी आता नहीं आता, स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, उन्होंने बोला कि भाई जगह नहीं है क्लास में, भगा दिया था मुझे। बढ़िया, मगर यहाँ पे बताना चाहूंगा आफ्ताब भाई, जवाब जो है गलत है। सही जवाब है जस्ट फॉन्टेन, जो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, मे बी फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता, हम तो क्रॉसेंट वाले इंसान हैं। और ठीक है, बट एनीवे, और यहाँ पे एक चीज जो बताने की है वो ये है कि एक ही वर्ल्ड कप एडिशन में 1958 के वर्ल्ड कप एडिशन में जस्ट फॉन्टेन ने फ्रांस के लिए 13 गोल स्कोर किए थे, 13 गोल्स। एंड 1958 एडिशन बहुत ही स्पेशल भी है, क्योंकि 1958 में ब्राजील ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें पहले यस अपने टीनेज यानी कि 17 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में उन्होंने ब्राजील के लिए खेला और काफी मैजिकल परफॉर्मेंस दिखाया था। तो और एक्चुअली आपका आंसर जो है आफ्ताब भाई वो मेरे सवाल के लिए गलत है, बट अक्रॉस 4 एडिशंस 16 गोल्स जो है उन्होंने स्कोर किए, एंड कंसिस्टेंटली इतने मतलब अपना गेम जो है 4 वर्ल्ड कप एडिशंस में अच्छा स्कोर करने के लिए, 16 गोल्स इन टोटल स्कोर करने के लिए उनको ये दिया, मतलब ये एक क्रेडिट भी दिया जाता है कि ही हैज स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स अक्रॉस 4 डिफरेंट एडिशंस करके, तो ये एक बात भी है। तो इन दैट एस्पेक्ट योर आंसर इज करेक्ट, बट जो आंसर मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो सवाल मैंने पूछा था, उसके लिए गलत है। बट फिलहाल थैंक यू सो मच बोलते हुए, यस प्लीज।
1: Is there any competition or Olympics kind of thing for Candy Crush?
0: सबसे पहले तो आप सीधा बैठो, उसके बाद बात करो, क्योंकि माइक में आवाज धीरे धीरे आ रही है आपकी।
1: Sorry sir, sorry. Can you hear me now? Hello,
0: yes,
1: hello.
0: Madam,
1: am I
0: yes,
1: audible,
0: yes.
1: sir?
0: Yes, madam.
1: हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, is there any kind of competition or Olympic kind of situation for Candy Crush?
0: फिलहाल तो है नहीं, और मुझे लगता है आने वाला भी नहीं है, और ये बात बोलते
1: हुए I will win like anything.
0: अरे भाई मैंने तनीषा को कुछ लेवल्स जिताए थे, बट मैं बता दूं कि मेजॉरिटी जो है लेवल्स तनीषा ही जीती थी। कैंडी क्रश में अलग ही चलता है इसका, कुछ अलग ही लेवल चलता है इसका। फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, काम की बात करेंगे थोड़ी देर बाद आके, कैंडी क्रश की बात में डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे। जबरदस्त हिट सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास
0: मेरी जान।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning Malabar Gold and Diamonds The Responsible Jeweler Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath jahan milti hai complete transparency aur bharosa
2: Commercial Bank Your future grows when your savings grows Save more dream bigger Win up to 5 million riyals with Commercial Bank
0: In association with Naseem Healthcare Naseem Surgical and Medical Center C Ring Road Healthy smiles anytime For more information call 4411 1133

देखिए गाने ने बात तो बिल्कुल सही कही है, मौसम है बड़ा कातिल, क्योंकि अभी का टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है 41 डिग्री सेल्सियस का। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। यार लाइफ में कभी कभी पलट के देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पीछे मुड़ के देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पीछे मुड़ के देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम पलट के देखेंगे नहीं, तब तक शायद हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितने दूर आए हैं, है ना। ये तो फिलोसफिकल बात हो गई, मगर अगर हम रियल लाइफ में थोड़ा और रियलिटी की ओर आए, सरियलिज्म की ओर आए, तो पीछे मुड़ के देखना समटाइम्स इट इज गुड। उसका एक रीजन ये है क्योंकि कभी कभी पीछे मुड़ के देखते वक्त हम जब देखते हैं कि कितने अच्छे अच्छे चीजें हमारे साथ हुई हैं, कितने खुशनुमा मोमेंट जो हमारी लाइफ में आए हैं, तो हम बहुत ग्रेटफुल भी फील करेंगे। अब ये भी थोड़ा जो है एक पॉजिटिविटी की ओर चला गया, मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पीछे मुड़ने के बारे में जो है, पलट के देखने के बारे में जो है, कशिश करेगी आपसे। कब से? 10 बजे से जो है वो आएगी यहाँ पे पलट के देखने के बारे में बात करने के लिए। तो पलट के देखने के लिए आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि वंस यू स्टार्ट लुकिंग बैक देन देयर इज नो गोइंग बैक। और उसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, वो यही है कि एक चीज मैं करता था पहले 2022 और 2023 के टाइम पे, स्पेशली 2022 में मैंने किया था, वो था हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द वीक। ठीक है, हर हफ्ते हर फ्राइडे आके मैं अपने लिसनर्स से पूछता था कि आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है, और वो पीछे देख के बताते थे कि हाँ भाई ये किया है मैंने। उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर को शाम को मैंने एक और स्टोरी डाली कि इतने दिनों में, मतलब इस पूरे साल में हर फ्राइडे हमने ये बात किया कि आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था। अब जरा आप रिविजिट कीजिए उन सब चीज़ों को, सारी चीज़ों को रिविजिट कीजिए, तो एक साल में जितने भी आपके हैप्पी मोमेंट्स थे जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको मिल जाते हैं। तो यू कैन डू वन थिंग, आप हमेशा अभी से भी ट्राई कर सकते हैं, हर हफ्ते एक जार लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा जार या फिर कुछ भी, एक बॉक्स हो सकता है कुछ भी, उसमें हर हफ्ते एक वीकेंड के टाइम पे कुछ चीज़ें लिख दीजिए जो आपको अच्छी लगी, जिसने आपको मुस्कुराया, मतलब मुस्कुराने में हेल्प किया, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दी, जिसने आपको बहुत ही अच्छा फील कराया, उसको लिखिए और उस जार के अंदर डाल दीजिए या फिर उस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, और मंथ के या फिर साल के एंड में आप उसे खोल के देखिए। समटाइम्स व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड यू शुड डू सर्टन थिंग्स लाइक दिस, सो दैट हमें पता चले कि लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: काफी आइकॉनिक मूवी, काफी आइकॉनिक गाना, और यहाँ पे एक आइकॉनिक पर्सनालिटी भी मेरे साथ पहुंच चुकी है, आरजे कशिश इज हियर। और आज आरजे कशिश जो है आज से एक नए रूटीन में आ रही है, तो yes. कशिश कैसा लग रहा है आपको?
1: नींद पूरी हो रही है, बट कहीं ना कहीं वो सारी मॉर्निंग फोटोज जो मुझे मिल जाया करती थी, वॉलपेपर वर्दी फोटोज नहीं मिल पाएंगी।
0: जी जी।
1: लेकिन मैं सबसे यही इल्तिजा करूंगी कि भेजिए, इस टाइम पर भी भेजिए।
0: क्या बात कर रही
1: हूँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्या बात।
0: अभी यही बात करते हुए हम भी जरा टाटा बाबाई करते हैं और निकलते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
0: ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे, हैव फन।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: तुम रहो।
1: यार ये कैसे चुप रहने की बात कर रहे हैं, और वो भी मुझ जैसे इंसान से जो चुप रह ही नहीं सकता। हां जी वेलकम है जी आपका 106.3 रेडियो आलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अब देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैं सुदेव से बात कर ही रही थी कि मैं कितना मिस करती हूँ आपके उन वॉलपेपर वर्दी फोटोज को जो आप मुझे सुबह सुबह बिंदास मॉर्निंग में भेजा करते थे। अभी भी खैर वो मैं व्हाट्सएप पे देख सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए पर्सनली क्लिक करके अगर आप भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। खैर थोड़ी सी देर में मौसम की बातें, मूवी की बातें और एक बहुत खास बात, पलटने वाली बात जो है वो हम करने वाले हैं। सो बस आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, आपको बस अपने रेडियो सेट से चिपके रहना है। बाकी अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट्स पर आते रहेंगे आपकी कशिश के साथ। सो इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में 10:07 हो रहे हैं एंड हमारा जो साथ है ये साथ साथ बहुत लंबा चलने वाला है। सो अमेजिंग वाले गाने आपके रेडियो सेट्स पर आ रहे हैं, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास। फिलहाल मेरा अभी करंट फेवरेट गाना जो है चांद मेरा दिल से आपके रेडियो सेट पर राघव चैतन्य की आवाज में एंजॉय कीजिए। और वही कहते रहिए जियो।

0: किसी भी साजना को कितने भी दिल से आप पुकार लीजिए, लेकिन वो आपको गर्मी से जूझने में बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। इवन जुबिन नौटियाल की जो आवाज है वो भी हमारे दिल को उतनी ठंडक नहीं पहुंचा पा रही है, इतनी गर्मी हो गई है। अचानक से इतनी गर्मी हो जाती है कि मेरे हाथ, मेरा माउस सब काम करना बंद कर जाता है, म्यूजिक ही नहीं बजा। वाओ खैर बात जो है गर्मी से गर्मी की ही कर लेते हैं। सो टेम्परेचर की बात मैं करने के लिए आ गई हूँ 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो लाइफ मस्त है, चल रहा है एंड 41 डिग्री सेल्सियस इस वक्त का टेम्परेचर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 41 डिग्री सेल्सियस, ओ माय गॉड इतनी ज्यादा गर्मी, तो नहीं, आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 तक जाएगा। हाँ जी, 43 डिग्री सेल्सियस आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है एंड लोएस्ट टेम्परेचर गेस करो कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस। मतलब रात को जब 31 डिग्री सेल्सियस होगा ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड कितनी ठंडक मिल रही है। सो देखिए इस गर्मी के चलते मैं बस आपको इतना कह सकती हूँ कि पानी बहुत सारा पीजिए, जितना हो सकता है उतना पानी पीजिए, सनस्क्रीन लगाइए एंड जितने वाटर बेस्ड फ्रूट्स होते हैं ना उतना ज़्यादा उन्हें कंज्यूम कीजिए। ऑरेंज हो सकता है, लेमन हो सकता है। मैं तो अपनी मम्मी को अब जब भी कॉल करती हूँ तो वो मुझसे यही बोलती है, तुमने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी बनाया, नींबू पानी बनाया। सो मैं कोशिश करूँगी कि आज उनसे नींबू पानी की रेसिपी ले लूँ एंड आपको वो वाली रेसिपी दे दूँ। तब तक के लिए आप अमेजिंग वाले गाने जो है वो इन्जॉय कीजिए। इस गर्मी में आपको कुछ और कूल मिले ना मिले, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जरूर मिलेगा।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।
0: सोनू निगम की आवाज शायद ये आपके दिल को ठंडक पहुंचा दे। मूवी का नाम जान, अगर म्यूजिक से आप पहचान गए हैं कि गाना कौन सा है तो आप दी ओजी हैं, ओजी। ये गाना एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदा।

Radio Olive, your happiness frequency. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

जेंजीज का सॉन्ग्स में टेस्ट अच्छा नहीं है, मुझे तो ये गाना बहुत ज्यादा पसंद है यार। देखो वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड मैं लाइफ मस्त है शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ मस्त अगर रहे, आप ये चाहते हैं, सो उसके लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। अब देखिए, मैं तो आपका फुल ऑन एंटरटेनमेंट बन के आ जाती हूँ, लेकिन ये एंटरटेनमेंट सिर्फ 3 घंटे का होता है एंड बाकी फिर आपको मुझे सोशल मीडिया पे आके फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको एंटरटेनमेंट 24/7 मिलेगा। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि 2026 में यानी इस साल में अब आने वाले टाइम पे क्या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए खास आपके पास आने वाला है, सो मैं बता दूं कि बहुत सारे बॉलीवुड न्यू रिलीजेस जो है वो होने वाले हैं। एंड मुझे ना कई बार ये जो सीक्वल आते हैं ना मूवीज के, इन्हें देख के ये लगता है कि ये बिल्कुल हमारे फोटोकॉपी या जेरोक्स मशीन की तरह है। पहला जो प्रिंट हम देते हैं वो तो बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन उसके बाद जो प्रिंट हम निकालना शुरू करते हैं उसकी क्वालिटी धीरे धीरे धीरे धीरे करके खराब होने लग जाती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हमें एकदम सही मात्रा में प्रिंट मिले, बिल्कुल उसी तरीके की कुछ चीज जो है वो होती है सीक्वल मूवीज के साथ। पहला पार्ट जो है जब डायरेक्टर्स बनाते हैं सारे एफर्ट के साथ बनाते हैं, बहुत अमेजिंग बनता है, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ आते आते जो है क्वालिटी खराब हो जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो आने वाला टाइम है क्या ये सीक्वल्स के लिए अच्छा होने वाला है। सो 2026 में बहुत सारी फ्रेंचाइज फिल्म्स जो है अपने सीक्वल्स के साथ आने वाली है। धमाल 4 आपको जुलाई 3 को देखने मिलेगी थिएटर्स में, भेड़िया 2 आने वाली है 14 अगस्त को, दृश्यम 3 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, शाहरुख खान की किंग जो है वो इस क्रिसमस पे रिलीज हो रही है। देखिए किंग जो है वो किसी की सीक्वल नहीं है, लेकिन हम इसे शाहरुख खान का जो है फिर से एक और कमबैक जो है वो कह सकते हैं। सो इसके लिए बहुत सारे लोग जो है वो काफी एक्साइटेड है, बिकॉज सुहाना खान जो है वो हमें दिखने वाली है। एंड मैंने किसी इंटरव्यू में तो सुना था कि किंग मूवी में आधे से ज्यादा बॉलीवुड जो है वो हमें दिखाई देने वाला है, यानी जितने अच्छे एक्टर्स आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे के सारे किंग में है। या देखो, मुझे तो बस शाहरुख खान को देखने की एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब इस इंटरव्यू के बाद ऐसे कुलबुली सी मचने लग गई है कि जल्दी से जाऊं और ये मूवी जो है रिलीज हो और मैं देख लूं। फिलहाल मेरा फेवरेट गाना सावरिया मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, यू शबनमी गाने का नाम है, इसे एंजॉय करो और मेरे साथ कहते रहो जी बिंदास।

0: Alif B. Story of the day. Story of the day.
1: एक्सपायरी डेट देखते हो, पैकेजिंग चेक करते हो, फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलते हो, तो मुबारक हो, आप फूड सेफ्टी के अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर बस इतना याद रखिए, जो फूड सेफ है वही फूड ग्रेट है। टेस्ट कुछ घंटों के लिए याद रहता है, हेल्थ सालों तक। स्टे सेफ, ईट सेफ, लिव सेफ। हैप्पी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।
2: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3 Radio
3: Olive. Bindaas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रुप पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: गिप्पूरी एट पलट मेरे यार विद आरजे कशिश सुबह 10 से 1 ओनली ऑन वीडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास पलट मेरे यार.
1: Hi everyone, this is Benny Deol here.
2: Benny Deol here.
1: Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: बातें करने की बात करो और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ यार अभी. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड काफी बार ना मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैं कुछ ऐसे कंटेंट पे पहुंच जाती हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं देखना है. एंड पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, लेकिन वो कंटेंट फिर आता रहता था मेरी फीड पे. लेकिन फिर मैं उसे या तो रिपोर्ट करने लग गई या तो नॉट इंटरेस्टेड का एक बटन होता है नीचे, उसे दबाने लग गई. अब सोचो मी बीइंग एन अडल्ट, वैसे मैं दिमागी तौर पर दिल से जो है अडल्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन एज के हिसाब से मुझे कहना पड़ता है खुद को अडल्ट. सो एज एन अडल्ट अगर मेरे पास नॉट इंटरेस्टेड दबाने का ऑप्शन है, लेकिन अगर वहीं मैं टीनेजर होती तो ये मेरे दिमाग पे बहुत बुरा असर डालता. इसीलिए मेटा ने जो है अपनी सेफ्टी सेटिंग्स को एक्सपैंड करने का फैसला लिया है. एंड जितने भी टीन अकाउंट्स है, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, मैसेंजर पे हो, यानी अगर कोई टीनेजर ऐसा कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज कर रहा है, सो उनके फीड पर कोई भी इनअप्रोप्रिएट जो कॉन्टेंट है वो नहीं आएगा. एंड रील्स पे या फिर अगर कोई बाहर से उन्हें कुछ अजीब मैसेज करता है, सो वो उनको रिसीव नहीं होगा. एंड वो इस तरीके के अकाउंट से जो है इंटरैक्ट भी नहीं कर पाएंगे. तो मुझे अच्छा लगा ये मेटा का एक फैसला कि अब टीन्स को जो है थोड़ा और सेफ कंटेंट देने के लिए वो काम कर रहे हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न ये होता है कि हमारे बच्चे पता नहीं कैसा कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज उसे फिल्टर नहीं किया जा सकता. किस हद तक आप फिल्टर करोगे? लेकिन अब मेटा ने खुद ये फैसला ले लिया है, तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा. एंड काफी सारे ऐसे फैसले जो है हमें भी अपनी लाइफ में लेने होते हैं जो कहीं ना कहीं हम नहीं लेते हैं. हम अपनी बातों से पलट जाते हैं, अपने वादों से पलट जाते हैं, लेकिन जहां पलटना होता है वहां नहीं पलटते हैं. और इसी पर बात आज हम करने वाले हैं लाइफ मस्त है में.
1: पलट मेरे यार.
0: हाँ, पलट मेरे यार में हम कुछ खास बातें करने वाले हैं. सो इसमें क्या कुछ खास है ये आपको थोड़ी देर से पता चलेगा. फिलहाल वक्त जो है वो होता जा रहा है ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर का. सो ये गाना जो है आप इंजॉय कीजिए.

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: और दिमाग से ना एकदम फ्रेश हो जाइए ताकि मैं आपको पलट मेरे यार पे सब कुछ अच्छे से समझा पाऊं। गाने का नाम है तेरा हो जाऊं, है जवानी तो इश्क होना है मूवी का ये ट्रैक है। एंजॉय कीजिए और कहते रहिए।

0: भाई एक जैसे ट्यून वाले इतने सारे गाने हो गए आजकल कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि ये कौन सा गाना है। मतलब मैं पहले ना खुद पे इतना गुरूर किया करती थी कि ब्रो कोई भी गाना सुना दो मुझे, मैं उसकी स्टार्टिंग से गेस कर लूंगी ये कौन सा गाना है, लेकिन अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो पाएगा ये मुझसे।
1: पलट मेरे यार,
0: हाँ जी, थोड़ी सी देर में पलट मेरे यार के साथ जो है मैं आ रही हूँ, लेकिन लेकिन लेकिन ये सब बस एक्साइटमेंट बिल्ड करने के लिए आपके लिए कि पलट मेरे यार में आखिर हम बातें क्या करने वाले हैं। सो उसके लिए आई एम श्योर आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि यूनुस खान जी ने जो है वो मुझे लिख के भेज दिया है कि भाई क्या करने वाले हो आप पलट मेरे यार पे। सो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ होने वाला है पलट मेरे यार पे, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ खास है उस पे बात करेंगे। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो एक बहुत ही फेवरेट नाश्ता है सबका, पोहा। बस आज जो है पोहा दिन है, यानी आज पोहा डे है। सो काफी सारी जगहों पे जहां पे पोहा बहुत खाया जाता है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं सो आज टीवीसी यानी टीवी सीरियल्स की क्वीन एकता कपूर का हैप्पी वाला बर्थडे है। सो अगर आप जो है वो कैरेक्टर समझते हो खुद को जो हमेशा ओवर रिएक्ट करता है या जो हमेशा जो है तैयार होके रहना चाहता है, तो आप फुल एकता कपूर वाली एनर्जी में रहने वाले इंसान हो। बस इसीलिए मैं भी आज एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आई हूँ अपने लुक में, एकदम एकता कपूर की सीरियल की। वो एक लड़की नहीं होती जो शुरुआत में मतलब बहुत पढ़ाई के लिए कीन होती है, जिसके बहुत सारे सपने होते हैं, स्कर्ट पहनती है वो एक फुल लेंथ वाला, उसके साथ एक स्टोल जो है उसके गले में रहता है, साथ में झुमके पहनती है, साथ में बहुत सारे बैंगल्स उसके हाथ में रहते हैं अलग अलग टाइप का, फुल ऑन देसी एस्थेटिक में वो लड़की रहती है। बस वही लड़की आज मैं बनकर आई हूँ। इंस्टाग्राम पर जाकर जो है आप देख सकते हैं, लिपस्टिक लगा के भी आई हूँ। बस इसीलिए खुद को एक अमेजिंग वाला गाना डेडिकेट कर देती हूँ यार, अदनान सामी का ये अमेजिंग वाला सिंगल है। सिमरन ने बहुत अमेजिंग इंटरव्यू लिया है अदनान सामी जी का, आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके देख सकते हैं, सिमरन के इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में। कहते रहो जी गोविंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: करने के बाद खुद को रोक भी नहीं पाते हैं।
1: वेलकम बैक पीपल, 106.3 रेडियो आलू पर मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड यार ऐसे गाने होंगे बॉलीवुड में तो फिर लाइफ कैसे किसी की मस्त ना हो। एंड मुझे ना मतलब बॉलीवुड फैन होने के बाद भी कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि यार बॉलीवुड ना अपना चांद धीरे धीरे करके खो रहा है। कहीं ना कहीं वो जो एक्साइटमेंट होती थी ना गानों में वो अब देखने को मिलती नहीं। कोई बात नहीं, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं धीरे धीरे अपने पापा मम्मी जैसा साउंड करने लग गई हूँ। वो लोग भी ऐसी बातें किया करते थे कि आजकल ना मज़ा नहीं आ रहा है, आजकल इस चीज़ में मज़ा नहीं है, आजकल उस चीज़ में मज़ा नहीं है, मेरी भी लाइफ में आजकल मज़ा नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा था जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब मेरी लाइफ फुल चटपटी हो चुकी है ना, आपकी लाइफ को भी चटपटा बनाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए है वो है क्रिकेट। सो क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फुटबॉल के बारे में तो आई एम डैम श्योर सुदेव ने बहुत अच्छी तरीके से आपको सब बता दिया होगा। सो क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने कल भी बात करी थी कि इंडिया और अफगानिस्तान की टेस्ट सीरीज जो है वो इस वक्त चल रही है, जहां पर शुभमन गिल जो है वो अपनी कैप्टेंसी से सबको एकदम घायल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सो इंडिया ने जो है फर्स्ट डे पर बहुत ही मतलब बहुत बहुत बहुत बहुत ही अच्छा खेला। एंड बहुत एक कड़ी मैं अगर कहूँ मतलब क्या बोलते हैं यार उसको क्रिकेट की बात आती है ना मैं थोड़ी सी ब्लैंक भी हो जाती हूँ, लेकिन बहुत ही टफ कंपटीशन जो है वो अफगानिस्तान को दिया जा रहा है। एंड शुभमन गिल ने सरप्राइजिंगली तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन शुभमन गिल ने बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो किया, 103 रन जो है वो उन्होंने बनाए। एंड ये उनकी 11th टेस्ट सेंचुरी है। वहीं पे KL राहुल की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 100 जो है वो हिट किया। एंड साई सुदर्शन ने बहुत अच्छा खेला है। एंड अफगानिस्तान की मुझे नहीं पता कि हालत है या नहीं है जीतने की, वो पता चलेगा, टेस्ट है ये, थोड़ा सा हमारे पेशेंस का भी टेस्ट लेता है ये क्रिकेट, इसीलिए शायद इसका नाम टेस्ट होता है। बाकी एक बहुत ही अमेजिंग चीज मैं थोड़ी देर में आपके लिए लाने वाली हूँ, थोड़ी सी आपको उसकी झलक दे देते हैं।
2: पलट मेरे यार,
0: मेरे यार पलट की कहीं मत जाना, वापस यही आना। पलट मेरे यार में कुछ बहुत ही खास बातें हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमेजिंग गाने जो है वो एंजॉय कर लेते हैं। तरु एजमनु का रंगरेज गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी।

एक्सपायरी डेट देखते हो, पैकेजिंग चेक करते हो, फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलते हो, तो मुबारक हो, आप फूड सेफ्टी के अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर बस इतना याद रखिए, जो फूड सेफ है वही फूड ग्रेट है। टेस्ट कुछ घंटों के लिए याद रहता है, हेल्थ सालों तक। स्टे सेफ, ईट सेफ, लिव सेफ। हैप्पी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

देखिए जी, फाइटर मूवी का ये ट्रैक है, गाने का नाम बेकरार दिल है। अब देखिए, मेरा दिल भी बेकरार है आपसे बहुत सारी बातें करने का, लेकिन वो हम थोड़ी देर बाद से करेंगे। मतलब बातें हम अभी भी करेंगे, लेकिन जिस बारे में मुझे आपसे बात करनी है, जिसलिए मैं एक्साइटेड हूँ, वो वाली बात हम थोड़ी सी देर में करेंगे। वेलकम बैक 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वक्त हो गया है आपको एक सजेशन देने का। हाँ जी, वैसे तो देखिए मैं सजेशन देती नहीं हूँ फ्री में, लेकिन मूवी सजेशन की अगर बात हो तो वो मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ के डिसीजन खुद अच्छे नहीं होते। मैं आपको लाइफ में क्या ही सजेशन दे सकती हूँ, मूवी के डिसीजन अच्छे होते हैं, सो वो मैं आपको देने वाली हूँ। आप मुझे देख के बताइए कि आपका ये जो मूवी वाला टेस्ट है वो मुझसे मैच करता है या नहीं करता है। हम सब ने आयुष्मान खुराना की बाला मूवी बहुत देखी, बहुत पसंद करी, लेकिन वैसी ही एक और मूवी है सिमिलर टॉपिक पे, जिसका नाम है उजड़ा चमन। 2019 में ये मूवी आई थी एंड मैंने अभी अभी रिसेंटली ये देखी है, एंड मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर लगी बाला मूवी से। हो सकता है ये मेरा खुद का ओपिनियन हो, मेरी पसंद हो, लेकिन इसमें जो लीड एक्टर है ना, वो वही है जो सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी में टीटू बने थे, आई गेस, या वो उनकी मूवी है। एंड उन्होंने एक ऐसे इंसान का रोल प्ले किया है जो थोड़े से जो है बालों की कमी से जूझ रहे हैं, जिनके बाल जो है अर्ली 30s में ही जो है वो झड़ चुके हैं, एंड किस तरीके से उनकी लव जो लाइफ है वो आगे बढ़ती है, किस तरीके से उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है, एंड इस बाल्डनेस की वजह से उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में एक मूवी है, लाइट हार्टेड मूवी है। पहला जो हाफ है वो आपको बहुत हंसाएगा, बहुत एंटरटेन करेगा, सेकेंड हाफ थोड़ा सा इमोशनल है एंड लव एंगल पर चला जाता है, सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार ये तो मूवी बहुत नॉर्मल सी है। सो अगर आप कुछ एक स्लाइस ऑफ लाइफ मूवी जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी देखना चाहते हैं, सो आप ये मूवी देख सकते हैं बिल्कुल। मैं इसे ज्यादा अच्छी मूवी नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप खाली बैठे और आपको कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम करना है, सो दिस इज अ पिक। एंड अगर मुझे 5 में से इसे रेट करना हो, सो मैं इसे 3 देना चाहूंगी, नॉट 3.5 बट या 3 तो मैं इसे दे ही सकती हूँ। सो आप ये मूवी देखिए, मूवी का नाम है उजड़ा चमन। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझे बता सकते हैं कि यार आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी। एंड थोड़ी सी देर में आपके लिए एक अमेजिंग चीज मैं लाने वाली हूँ, जरा झलक दे देती हूँ आपको उसकी। पलट मेरे यार, तो मेरे यार पलट के क्या देखने वाले हैं, हम इस पर बात करेंगे थोड़ी सी देर में। तब तक आप ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करके आइए। रेडियो

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

0: देखिए, आप कभी ना कभी चीटिंग करने के लिए एग्जाम में पीछे पलटे जरूर होंगे, और अगर नहीं तो कभी ना कभी वादे से तो जरूर पलटे होंगे, और कुछ नहीं तो कोई गलत काम करते हुए आपके दोस्त ने जब कहा होगा पलट तो पलटे होंगे। लेकिन देखिए, सारी गलत जगहों पे आप पलट जाते हैं, लेकिन एक जगह जहां पर आपका पलटना जरूरी है, बस वहीं नहीं पलटते मेरी जान।
1: पलट मेरे यार,
0: हाँ जी, पलट मेरे यार में लेकर आ गई 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश, एंड आज हम पलटने की बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी सही जगह है जहां पे आपका पलटना जरूरी है। सो देखिए, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं, आई एम डैम श्योर आप पैकेजिंग देख के बहुत ज्यादा, मतलब आपका मन कर जाता होगा कि यार ये वाला प्रोडक्ट ले लेता हूँ। लेकिन क्या आप कभी उस प्रोडक्ट को पलट के देखते हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या कुछ डला है जो आपके लिए हेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है? क्या एक्सपायरी डेट जो है वो 6 महीने से ज्यादा की है, या फिर बेस्ट बिफोर में ब्रैकेट में कुछ खास इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है? नहीं देखते ना। सो बस आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम।
1: पलट मेरे यार,
0: पलट मेरे यार में एक प्रोडक्ट मेरे पास रखा हुआ है, उसको भी लेकर आऊंगी। जरा उसका आगे का और पीछे का क्या मामला है ये आपको पढ़ के सुनाऊंगी। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, इन्हें एंजॉय कीजिए। पलट मेरे यार के लिए पलट के वापस मेरे पास जरूर आना मेरे यार। मैं हूँ आपकी कशिश, जियो बिंदास।

0: 22 साल की हो गई मैं सिर्फ इस इंतजार में कि कोई शाहरुख पीछे से कह दे पलट पलट पलट और मैं पलट जाऊं। लेकिन लेकिन लेकिन आदत ही खराब है ना, हर गलत जगह पे मैं पलटी हूँ, सही जगह पे मैं पलटती नहीं हूँ। लेकिन अब नहीं मेरे दोस्त, अब मैं समझदार हो गई हूँ, अब मैं आपको भी समझाऊंगी कि कहाँ पलटना है।
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: हाँ जी, वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड पलट मेरे यार में मैं आपको ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपको पलटना है। सो इस वक्त मेरे हाथ में मेरा कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा है, यानी सीरियल जो मैं खाती हूँ सुबह उसका डब्बा है, जो मैंने उसका फ्रंट देख के फैसिनेट होके खरीद लिया था कि आखिर इसमें जो है फैट फ्री लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, इतनी अमेजिंग पैकेजिंग है, तो ये तो हेल्दी होगा। मैंने इसका बैक अच्छे से पढ़ा ही नहीं, लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं पढ़ने वाली हूँ। सो सबसे पहले इसके फ्रंट पे क्या लिखा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है बिग बोल्ड लेटर्स में 100% होल व्हीट, जीरो कोलेस्ट्रॉल और इम्यूनिटी बूस्टर। उसके बाद इसमें मल्टी ग्रेन भी है और नो शुगर भी है। अब मैं अगर इसे पलट के देखूं तो सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कंपनीज को लॉ के हिसाब से सबसे ऊपर लिखनी होती हैं, जो सबसे ज़्यादा है। सो वैसे हमने अभी पढ़ा था कि ये शुगर फ्री है, लेकिन इसमें शुगर को दूसरे नाम से जो है वो लिखा गया है। सो इसमें सबसे पहले तो रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा है, ऊपर होल व्हीट लिखा हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सर्विंग साइज जो है, इसमें लिखा था नो कैलरीज और इसमें लिखा है 100 कैलरीज ओनली, लेकिन लेकिन बहुत छोटा छोटा सा लिखा है पर 30 ग्राम, मतलब हर 30 ग्राम में सिर्फ 100 कैलोरीज है। और देखो मैं सिर्फ 30 ग्राम तो खाने नहीं वाली हूँ, है ना। अब शुगर्स की बात पे अगर हम वापस आते हैं तो बार्ले माल्ट जो है वो लिखा हुआ है, इनवर्ट शुगर लिखा हुआ है। ये सब जो है आपस में भाई बहन है, इनका मतलब भी शक्कर ही होता है, शुगर ही होता है। सो ये आपके हेल्थ के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं यही कहती हूँ कि सावधान रहें, डोंट जस्ट रीड द कवर, बिकॉज वंस यू स्टार्ट लुकिंग बैक देयर्स ऑलवेज लुकिंग बैक। तो मेरी यार, मेरी बात मानो ना मानो, हमारी एक्सपर्ट की बात जरूर से मान लेना। थोड़ी सी देर में आ रही हूँ मैं अपने फूड सेफ्टी एक्सपर्ट के साथ पलट मेरे यार में आपको और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तब तक अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय करते रहो एंड याद रखना कि पलटना है।
1: पलट मेरे यार।
0: मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
1: कूल सॉन्ग।

हो लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: हम में से 73% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसे जो है पलट कर देखा ही नहीं है, उसके पीछे का कंटेंट, एक्सपायरी डेट ये सब कभी देखी ही नहीं।
1: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार।
0: इसीलिए तो कह रही हूँ पलट मेरे यार। 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए पलट मेरे यार लेकर आ गई हूँ, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि पलटना जरूरी है, प्रोडक्ट को पलटना जरूरी है जब आप उसे खरीदते हैं, और उसके पीछे के कंटेंट जो है उनको देखना परखना जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कि यार क्या कुछ खास इसमें मिला हुआ है। अब आप मेरी बात तो मानेंगे नहीं, इसीलिए अपने साथ अपनी एक्सपर्ट को मैं लेकर आ गई हूँ जो आपको बताएंगे कि यार क्या कुछ देखना इम्पोर्टेंट है। सो आइए इनसे बात कर लेते हैं।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मखोलवर्द, आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर। आई हैव बीन विद बॉयकर फॉर अराउंड 20 इयर्स एंड इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी एंड एन expert in the GCC. So I'm gonna be with you today and you are listening to Radio Olive.
0: Okay, so Hala, we are encouraging people to flip the product and to see the content. So do you flip the product and see the content before buying it?
2: Well, for me definitely. But why? Because I'm in the field. I will definitely look, flip, take the product, read and take my time. Okay. But this is not actually done by every single person.
0: Yeah.
2: When you're in a hurry, you jump to the supermarket, sometimes you are buying online. If you go there, you're interested with the color of the packaging, it looks nice, you're interested as well the country of origin, or you're simply hungry, whatever is in front of you, you are taking.
0: Yes.
2: But let's pause a bit and really think about it. We definitely need to flip. Why? There is two very important criteria you need to look for on the packaging. First, the nutrition facts. What do we mean by nutrition facts? It means the quantity of nutrient inside. As simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of fat, quantity of protein.
0: Yeah.
2: We want to, for example, increase the good fat in your food. So let us start by reading the nutrition facts. Then, when you say nutrition facts, it's very generic. Carbohydrate. But move with me down to the ingredient list. And here you start reading the type of carbohydrate, you read the type of fat you have inside, as well as protein. And watch out, the label itself is very tricky. Sugar-free. Does it mean sugar-free 100%? No, it's not the case. Or you read on it, no added sugar.
0: Right.
2: What does it mean, no added sugar?
0: Exactly. Sugar ki kya zarurat hai ek natural fruit juice mein? Wo to automatically sugar ke saath aata hai na, natural sugar ke saath aata hai. Bas aisi hi kuch cheeze hain jinhe hum ignore kar dete hain aur bas usi par hum dhyan de rahe hain. Palat mere yaar ke chalte.
1: Palat mere yaar. Palat mere yaar.
0: So I hope मेरे यार आप पलट के देखेंगे आप अपने प्रोडक्ट्स को। बाकी और इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी देर में आपके लिए लेकर आ रही हूँ, आप स्टे ट्यून रहिए और अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय करते रहिए रेडियो ऑलिव पर, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Story of the day. Story of the day. एक्सपायरी डेट देखते हो, पैकेजिंग चेक करते हो, फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलते हो, तो मुबारक हो, आप फूड सेफ्टी के अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर बस इतना याद रखिए, जो फूड सेफ है वही फूड ग्रेट है। टेस्ट कुछ घंटों के लिए याद रहता है, हेल्थ सालों तक। स्टे सेफ, ईट सेफ, लिव सेफ। हैप्पी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
0: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हमारी फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हाला से जब मैंने बात करी ना, तो मुझे समझ आया कि कितनी सारी चीजें हैं जो मैं गलत कर रही हूँ डेली बेसिस पे. मतलब एक प्रोडक्ट लेने से पहले एक्सपायरी डेट तो मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, लेकिन बेस्ट बिफोर या ब्रैकेट में लिखी हुई कुछ चीजें अक्सर इग्नोर हो जाती हैं.
1: पलट मेरे यार.
0: बस इसीलिए तो पलट मेरे यार कह रही हूँ कि मेरे यार जरा पलट के देखो खरीदने से पहले प्रोडक्ट को, कि आखिर उसके पीछे क्या कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स हैं जो मेंशन है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. अब देखिए, एक्सपायरी डेट, शेल्फ लाइफ और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान देकर प्रोडक्ट खरीदना है, ये मैं आपको बताऊंगी कल के शो में. सो कल आपको लौट के आना है पलट मेरे यार पे. एंड आज तो देखिए हमने खाने की बात करी क्योंकि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी आज सेलिब्रेट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मैं स्किन केयर की बात करूं, चाहे वो मैं होम केयर की बात करूं, बेबी केयर की बात करूं, जिसे हमें ध्यान देकर ही खरीदना होता है. सो उन पर बात करेंगे कल एंड परसों. सो आपको कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून्ड रहना है 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश. अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर. अब मेरे जाने का वक्त हो गया है. तनीषा आएंगी अपनी प्यारी सी स्माइल लेकर आप सबको दीवाना बनाने के लिए. सो उन्हें बहुत सारा प्यार दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड आपकी कशिश को दुआओं में जो है याद रखिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुदेव कहते हैं. फिलहाल मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, एंड रेडियो ऑलिव के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah, guys.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु.
3: हाय, आई एम राजकुमार राव.
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 106.3 Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: ऑलिव म्यूजिक मैराथन. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

Falcon Fitness Health Club की 6th ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ एट बिनोम रान. सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम, अन्ना राजन, सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल. फाल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा. अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, विजिट फाल्कन फिटनेस बिनोम रान. वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल. मॉर्निंग्स एंड

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: Tanisha.
1: कुमार सानू साहब की आवाज में तेरा मेरा प्यार ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम तनिषा गया के साथ ऑली रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान. संडे जून 7th हफ्ते का पहला दिन कैसा जा रहा है बताइए. गर्मी तो बहुत क्रेजी हो रखी है पर ये जो आपके सिर के अंदर का तापमान है वो कैसा है ये जानना चाहूंगी. 3311063 पर मैसेज कीजिए मुझे और बताइए. इंस्टाग्राम पे सुना ही होगा बैक टू बैक रील्स में आ गया है जी रेडियो पर ब्रांड न्यू ट्रैक साडी सन फॉर यू. नॉस्टैल्जिया का तड़का तो जरूरी होता है ना.

जब भी मैं सी ए ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ मोहित चौहान और मैं वापस आऊंगा मूवी से मस्कारा सो इनिशियली व्हेन दिस सॉन्ग केम आई वाज लाइक ये क्या गाना है ये कोई सेंस बन रहा है क्या गा रही है ये बट इवेंचुअली इट ग्रू ऑन मी यार अब मुझे मजा आ रहा है इस गाने को सुन के तो साथ में एंजॉय करेंगे और भी ढेर सारी सरप्राइजेस है बहुत सारी बातें करनी है लेकिन सबसे पहले आप क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है हाल चाल बताइए फटाफट से अपने जानना चाहूंगी मैं 3311 1063 पर क्या कर रहे हैं कहां से सुन रहे हैं सब कुछ विस्तार में भेज दो कोई चक्कर नहीं है कॉल भी कर सकते हो 4444 1063 पर स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास मेरी जान

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Danisha.
1: Danisha. हर्ष की आवाज में साड़ी सुन, बहुत ही बढ़िया गाना. और वो जो एक बीच में स्टैंजा आता है, लिटरली एक लाइन ऐसे वायरल हो जाती है इंस्टाग्राम पे और आप पूरा गाना उसकी वजह से सुनते हो. एंड एज सून एज दैट लाइन कम्स यू वांट टू लाइक जैम अलोंग. वही हाल मेरा हो रहा था इस वक्त. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ ऑल ओवर चार्ट चल रहे हैं यहाँ पर. और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वाली मैं आपको बोलने जा रही हूँ, गौर करिएगा इस पर और ऐसे ना दिमाग में बिठा लो इसको, ठीक है. हर चीज दिल पे मत लिया करो मेरी जान. दिल के पास दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उसे वो करने दो. ये छोटी छोटी चीजें कि आज उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, ये सारी नॉनसेंस छोटी छोटी सी चीजें अगर हम अपने यू नो दिमाग पर और दिल पर हावी कर लेंगे तो बाकी चीजों पर फोकस कैसे किया जाएगा. ना आप कर पाएंगे ना आपका दिल कर पाएगा. सो यू नो दिल को भी अपना काम करने दो, आप भी अपना काम करो. इन छोटी मोटी चीजों को दो गानों का इस्तेमाल करके जाने दो, एक से सुनने का दूसरे से निकाल देने का, इजी पीजी. हाँ जी, अब माहौल इतना गर्म हो रखा है, यू नो वेदर इज वेरी वेरी हॉट, तो कूल सॉन्ग तो बनता है. तो आइए एंजॉय करते हैं. आजा पिया तो है प्यार दो. ओए होए, स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है. कूल सॉन्ग.
3: हनी, when are you coming?
4: I'm coming baby, I'm on my way home.

कुछ ना कहो मूवी से अच्छी लगती हो, ये गाना मैं रोज खुद को देख के बोल देती हूँ। ना आपको भी एडवाइस करती हूँ कि आईने में जब भी खुद को देखो बोल देना, लड़कों के लिए भी है यार, अच्छा लगता हूँ बोल देना। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिवर 6.3 एफएम, तनीषा आपके साथ। ऑलिवर रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और भाई क्यूसीबी ने अनाउंस कर दिए हैं अपडेट्स फॉर 5, 10 एंड 50 रियाल नोट्स। हाँ जी, सो देर आर अ फ्यू चेंजेस इन द न्यू नोट्स जो कि आज ही अनाउंस किए गए हैं। सो 5, 10 और 50 रियाल की ये जो फिफ्थ सीरीज के नोट आए हैं उसमें तीन खास चेंजेस हैं। ऑफिशियल स्टेट एम्बलम ऐड किया गया है, अरबिक न्यूमरल्स हैं और इशू डेट भी है उसमें। और जो पुराने वाले वर्जन्स थे 5, 10 और 50 रियाल नोट्स के, वो अभी भी कंटिन्यू हैं, वो यूजेबल हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि नए वाले आ गए तो पुराने वाले यूज नहीं कर सकते, नहीं नहीं, बस आपको बताया गया है कि अगर आपको नया नोट मिले और आपको लगे कि अरे ये चीज़ें तो पहले वाले में थी नहीं, सो यू शुड बी अवेयर, राइट? बस इसीलिए बता दिया आपको। अब जाओ ऐश करो, बढ़िया गाना भेज रही हूँ, एंजॉय करो उसको। जब वी मेट मूवी से मोहित चौहान की आवाज में, तुमसे ही ओनली ऑन रेडियो ऑल एफएम, जियो बिंदास मेरी जान।

0: Story of the day. Story of the
1: day. एक्सपायरी डेट देखते हो, पैकेजिंग चेक करते हो, फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलते हो, तो मुबारक हो, आप फूड सेफ्टी के अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर बस इतना याद रखिए, जो फूड सेफ है वही फूड ग्रेट है। टेस्ट कुछ घंटों के लिए याद रहता है, हेल्थ सालों तक। स्टे सेफ, ईट सेफ, लिव सेफ। Happy World Food Safety Day. Story of the day.
0: Story of the day. Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Olive Recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
5: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
7: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

0: Hi, मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. You're listening to Radio Olive. Jio Bindas.
1: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, Qatar's number one Asian radio network.

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

कोई कैब मिल रही है दैट इज नॉट लीगल एंड इट विल बी वायलेटिंग द लॉ, सो डू नॉट यू नो पार्टिसिपेट इन दैट और डू नॉट बुक फ्रॉम दैट. ये जो साथ हैं इन्हीं में से बुक कीजिएगा. सतर्क रहिए, सावधान रहिए मेरी जान, और अपना ख्याल रखते रहो यार, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो. इसीलिए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर आपके लिए, मस्कारा इन द वॉइस ऑफ नीलांजना घोष. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Radio Olive, your happiness frequency.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: भाई ये गाना सुन के तो विकी कौशल ही याद आता है, क्या डांस करता है वो इंसान यार। You're listening to Radio 106.3 FM, तनिषा ऐप के साथ और रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। और पेप्सी और कोका कोला ने कुछ तो मर्जर सा किया है, ठीक है, हाथ हाथ मिलाए हैं, ये सब तो ठीक है, ओके है, लेकिन एक गलत बात जो बोल दी कोका कोला के सीईओ ने, एंड आई बेग टू डिफर लाइक रियली स्ट्रांगली। वो कहते हैं कि पेप्सी और कोक सेम तो टेस्ट करते हैं। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट एंडोर्स सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, आई अवॉइड यूजुअली, लेकिन कोका कोला और पेप्सी हैव वेरी डिफरेंट टेस्ट, दोज हु नो दे नो। कोका कोला इज एनी डे बेटर देन पेप्सी, व्हाट डू यू से? डू यू थिंक दोनों का टेस्ट सेम होता है? आई नो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, जितना हो सके ना ही पिए तो बेहतर है, पर जस्ट फॉर रेफरेंस बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि दोनों के टेस्ट सेम है? 3311063 पर फटाफट से मैसेज कर दो और बता दो, और सुनते रहो रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

श्वेता पंडित की आवाज में साथ में ईशान मोहब्बते मूवीज चलते चलते ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। तनीषा आपके साथ ऑलिव रिटॉर्ट चल रहे हैं यहाँ पर, और भाई कुछ भी हो रहा है दुनिया में आर्ट के नाम पे, मतलब आर्ट यस इट इज अ वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन कुछ लोग उल जुलूल चीजें कर रहे हैं और उसे आर्ट बोल देते हैं और उसके नाम पे बड़ी महंगी महंगी टिकटें लगा देते हैं। सो US में बेसिकली ये चीज हो रही है, एंड देयर इज वन आर्टिस्ट, वो ऐसे बहुत सारे जेल के डंप में बैठी हुई है, ठीक है, वहां पे बहुत ऐसा जेली टाइप ऑफ लिक्विड है और वो उसके अंदर बैठी है, एंड शी इज जस्ट प्लेइंग विद दैट, यू नो, डूइंग समथिंग विद दैट, एब्सोल्युटली मेकिंग नो सेंस। आई सॉ दैट वीडियो एंड पीपल आर पेइंग $100 to $200 टू वॉच दैट आर्ट लाइव, एंड कॉमेंट सेक्शन में जब मैं गई तो मुझे मेरी तरह सोचने वाले काफी लोग वहां पर मिले, एंड दे ऑल वे लाइक कि भाई ये क्या है, आर्ट के नाम पे कुछ भी कर रहे हो आप, एंड पीपल आर वॉचिंग इट, व्हाट मतलब क्या समझ पा रहे हो आप इससे, कौन सा एक्सप्रेशन निकल पा रहा है इससे, यही नहीं समझ में आ रहा है। सो इफ यू हैव कम अक्रॉस दिस वीडियो, क्योंकि फिलहाल काफी वायरल चल रही है सोशल मीडिया पे, डू लेट मी नो, अदरवाइज मैसेज कर दो रेडियो ऑलिव के पेज पर, radioolive.qs दी हैंडल, मैं भेजूंगी आपको वो वीडियो, फिर आप समझ पाओगे कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो विद अस।

0: हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

106.3 FM दिनीश आपके साथ ऑल एवरी जॉर्ज चल रहे हैं अब वैकी विजडम में आज हम बात करेंगे कलर स्कीम. सो देर इज दिस अनसेड नोशन राइट कि पिंक इज फॉर गर्ल्स एंड ब्लू इज फॉर बॉयज. जैसे यू नो बेबीज आर अबाउट टू बॉर्न तो अगर कोई गिफ्ट भी कर रहा है ना कुछ तो वो ब्लू बॉयज के लिए गिफ्ट करते हैं एंड पिंक गर्ल्स के लिए. सो इनिशियली पता है क्या था, इट वॉज एक्चुअली ऑपोजिट. सो पिंक वॉज मोर प्रेफर्ड फॉर बॉयज बिकॉज इट इज क्लोजर टू रेड, सो इट इज मोर स्ट्रॉन्गर मोर एनर्जेटिक. Yes, that is why they used to use pink for boys specifically. But eventually, marketers ne decide kiya ki nahi, it should be opposite. Pink seems like a very delicate color, so it should be used for girls. And they marketed it that way aur sara ka sara norm hi change kar diya. And if you see in the history, you know, ye marketing decisions itne zyada strongly impact kiye hain bahut sari cheezo ko. Un sabke bare mein dheere dheere baat karungi. I've got so much content regarding this, you know, in sab cheezo ke bare mein ki kis tarah se marketing ne hamare perception ko change kiya hai. Lekin this is one of the examples. So from now on, कोई कलर किसी के लिए नहीं, जिसको जो अच्छा लग रहा है उसने वो पहनना है. हाँ जी ऐसा ही होता है. मुझे ज्यादा ब्लैक पसंद है, मैं वही पहनूंगी, कौन रोक सकता है मुझे बताओ. सेंडिंग है जवानी तो इश्क होना है. ऑल योर रेडियो ऑल जीवन दास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Oliver 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Oliver Richard chal rahe hain yahan par, and that was Dhurandhar title track for you. वक्त हो गया लीम जेम्स का, और आज का मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी बस है जिसमें आप बैठ नहीं सकते? सो इफ एनी किड इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू, तो आपको बहुत जोर से आ जाना चाहिए इसका आंसर. ऐसी कौन सी बस है जिसमें आप बैठ नहीं सकते? 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए, या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. ऐसी कौन सी बस है जिसमें आप बैठ नहीं सकते? स्टे ट्यून्ड एंड जी यू विद अस.

0: तनिषा
1: दर्शन रावल और जॉनिता गांधी की आवाज में धड़क 2 से 3 थ्री ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और जी लेम जैम्स पूछा था कि ऐसी कौन सी बस है जिसमें आप बैठ नहीं सकते एंड व्हाई आई टारगेटेड स्टूडेंट्स इसमें कि यू नो बच्चों को तो आ ही जाएगा बिकॉज ये हमारे स्कूल का बहुत बड़ा यू नो पार्ट होता है यस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये हमारे लिए सो एक बार और विचार कीजिए और बताइए कि ऐसी कौन सी बस है जो स्कूल से रिलेटेड है लेकिन हम उसमें बैठ नहीं सकते 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास मेरी जान
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
3: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
0: कूल सॉन्ग

0: अलीशा
1: अलीशा नीरज श्रीधर अलीशा चुनौती की आवाज में टिकट टू हॉलीवुड भाई क्रेजी गाना है और अभिषेक बच्चन वाज सुपर क्रेजी इन दिस वन एंड आई थिंक दैट इज हिज एक्चुअल पर्सनालिटी आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट वे वो यू नो इतना बच्चन नाम का जो प्रेशर है उनके ऊपर उसकी वजह से उनको इतना सीरियस एंड ऑल रहना पड़ता है बट ही सीम्स टू बी अ वेरी चिल गाय टू मी यार आई वुड लाइक टू मीट हिम वंस एंड आस्क हिम दिस क्वेश्चन कभी होगा तो बताऊंगी आपको ठीक है फिलहाल बात करते हैं लेम जेम्स की यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तन की जो आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहां पर So, Lame Jams का आज का मेरा सवाल था कि ऐसी कौन सी बस है जिसमें आप बैठ नहीं सकते और फिर मैंने ये भी बताया था कि यू नो हमारे स्कूल से रिलेटेड है ये और बहुत ज़रूरी होता है स्कूल्स में सो अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग बस स्टैंड बस स्टॉप नो दैट्स नॉट अ बस दैट्स अ स्टॉप इट सेज दैट सो वो करेक्ट आंसर नहीं है बट यू ट्राइड सो वेल एंड गुड आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर दैट सबसे पहले करेक्ट आंसर मुझे भेजा था संगीता जी ने उसके बाद में भेरा राम जी का मैसेज आया है दिपिन का मैसेज आया है ओनली दीज थ्री पीपल हु गेव द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज सिलेबस यस उसके बिना तो हम स्कूल में क्या ही कर सकते हैं सबसे पहले जरूरत उसी की पड़ती है कि क्या क्या पढ़ना है इस बार सो या सिलेबस इज द बस यू कैन नॉट सिट इन आई नो गुस्सा रहा होगा कोई बात नहीं उसको शांत करने के लिए एक बढ़िया गाना भेज रही हो अगेन नीरज श्रीधर की आवाज में कमबख्त इश्क मूवी से लेकिन उससे पहले बताऊंगी कि फटाफट से जॉब रेडियो ऑलिव के पेज पर कशिश इज डूइंग समथिंग रियली अमेजिंग आप उसको लाइफ मस्त है पे आज सुबह सुनाई होगा आपने एंड शी इज डूइंग दिस रियली कूल थिंग यू नो पलट मेरे यार सो उसमें वो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अमेजिंग चीज़ें बता रही हैं गौर से सुनिएगा कल भी ट्यून इन कीजिएगा 10 से लेकर 1 बजे के बीच में और फिलहाल जाइए रेडियो ऑलिव के पेज पर क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो उसने पोस्ट किया है उसने एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट से बात की थी वो कॉन्वर्सेशन सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया मज़ा आएगा फटाफट से जाइए चेकआउट कीजिए उसे लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव बिंदास मेरी जान

0: Story of the day. Story of the day.
1: एक्सपायरी डेट देखते हो, पैकेजिंग चेक करते हो, फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलते हो, तो मुबारक हो, आप फूड सेफ्टी के अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर बस इतना याद रखिए, जो फूड सेफ है वही फूड ग्रेट है। टेस्ट कुछ घंटों के लिए याद रहता है, हेल्थ सालों तक। स्टे सेफ, ईट सेफ, लिव सेफ। हैप्पी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: तनिषा
1: श्रेया घोषाल और बाबुल सुप्रियो की आवाज में लैला मजनू से ब्यूटीफुल ट्रैक सर फ्री ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑल ओवर चार्ट चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरी जान का मेरी जान। मिलेंगे कल दोपहर 2 बजे, तब तक आपने क्या करना है, आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत सारा पानी पीते रहिए, ऐसे फ्रूट्स खाइए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, और जो खाना खा रहे हैं मेक श्योर कि वो थोड़ा लाइट हो, यू नो ऑयली ना हो ज़्यादा, क्योंकि उस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है इस वेदर में। एंड मेक श्योर कि अगर कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो उसे सही वक्त पर खा लिया जाए, उसे ऐसे रख के स्टोर करके बाद में खाएंगे टाइप्स वाली चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को यू नो स्टमक इश्यूज़ हो रहे हैं, फूड पॉइजनिंग हो रहा है। सो उससे बच के रहिए और अपना ख्याल रखो यार, बस आप मस्त रहो, सब सही है। एंड इफ यू हैवंट येट, फटाफट से फॉलो कर लो हमें, radioolive.qs दी हैंडल, सोशल मीडिया पर हर जगह से स्पैम कर दो, यू नो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, सब जगह फॉलो कर लो, यूट्यूब पर भी। एंड अगर कोई बाहर ट्रैवल कर रहा है या फिर आपकी कोई फैमिली बाहर है, एंड यू नो आप उनको भी बताना चाहते कि भाई रेडियो ऑलिव से आपका कितना मजबूत रिश्ता है कि हम आपके मन की बात समझ जाते हैं, बड़े बड़े गाने चला देते हैं आपके लिए, तो उन्हें बताइएगा कि हमारी ऐप है, वो डाउनलोड करके देश के दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। जी हाँ, और फिलहाल चलती हूँ, मिलेंगे कल दोपहर, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास मेरी जान। Radio

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. फैल्कन फिटनेस हेल्थ क्लब की सिक्स ब्रांच ग्रैंड इनॉग्रेशन हुई एक जबरदस्त सेलिब्रेशन के साथ अदबिन उमरान सेलिब्रिटी गेस्ट शेन निगम अन्ना राजन सिया सलीम और रोशन बशीर ने मिलकर बनाया इस शाम को ट्रूली अनफॉरगेटेबल फैल्कन फिटनेस ने शुरू किया एक नया चैप्टर इन दोहा अगर आप भी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं विजिट फैल्कन फिटनेस बिन उमरान वन फैमिली वन मिशन अनस्टॉपेबल
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.

डॉल्फिन, क्या लिरिक्स है ब्रो, तेरे सीने पे बीन बजा दूंगा तो नाच मेरी नागिन। बताओ कि हर बार कोई सेंस बनाना जरूरी नहीं होता, आपको बस वाइब करना होता है यार। शौक है अपने अपने, और जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। 5:36 आएगा बस थोड़ी देर में, उसके साथ साथ और बताओ क्या हाल चाल है आपके, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, और उसके साथ साथ कैसा रहा आपका आज का दिन वो भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे दिन जो है ना आपका जो भी रहा उसके ऊपर शाम बहुत ज्यादा मैटर करती है बहुत सारे लोगों की। लेकिन अगर आपके पूरे दिन में भसड़े मची हैं तो आप अपनी शाम उसको लेके खराब करने वाले तो बहुत गलत बात है, गंदी आदतें हैं ये। जो पहले हो गया, जो पूरे दिन में हो गया, उस चीज को वहीं पे छोड़ दो, ठीक है, और एंजॉय करो 4 घंटे अपने, मेरे को अटेंशन दो यार। 3311106 पर भेजो आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: बड़ी बात होती है ये एक दिल किसी को देना। वो दिल सामने वाला संभाल ले तो बात बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन वही एक दिल के टुकड़े टुकड़े अगर हजार कोई कर दे तो फिर वो समेटे नहीं जाते। ओए होए होए सिमरन कौर, मुझे कभी कभी अपने ऊपर होता है कि तू कैसी कैसी बातें कर जाती है यार। मतलब ये क्या पंजाबी में बोलते हैं ना, जो दुपट्टे रंगता उसको ललारी ललारी को, ऐसे लग रहा है गाना ललारी को डेडिकेट कर रही है। मैं कहनी हूँ मेरे बिन तैनू सुने कोई होर नहीं लभना, मैं अपनी बात करती हूँ तुम अपनी बात करो। यार एक बात जो है लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि हेयर कट जब कोई इंसान करवाता है तो ये एक जब इंसान का मेंटल ब्रेकडाउन होता है ना, उसको कंट्रोल, ही सीकिंग फॉर कंट्रोल, और जब वो अपने बाल कटवाता है या हेयर कट करवाता है तो ये एक रीबर्थ एक तरीके से माना जाता है। और मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी, सो मैं अचानक से इसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं अपना रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए अपना अपने बालों के लिए गई तो वहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे मैं देख रही हूँ सिमरन कौर बहुत टाइम होगा तूने अपने बाल नहीं कटवाए, तो मैंने अपने बाल छोटे करवा दिए। ओके, अब ऐसे टाइम पे जो जो लोग आपको समझते हैं उनको पता है कि तू क्या है सिमरन कौर, तो उन्होंने तो नहीं पूछा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि क्या हुआ लाइफ में, सब ठीक है कि तूने बाल कटवाए। तो बालों को ऐसे बोला जाता है कि जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन होता है तो आप बाल कटवाते हो, लेकिन ऐसा इसके बारे में पढ़ रही थी कि कभी कभी क्या होता है कि जब अंदर आपके दिल में बहुत सारा पेन होता है तो जब आप बाल कटवाते हो तो ये इमोशनल रिलीज होता है या एक क्विक डोपामिन हिट होता है आपके लिए, फिर आपको लगता है कि ये एक यू नो लेयर को शेड करना, टाइज को कट करना हो जाता है लाइफ के पेनफुल चैप्टर को। सो थैंकफुली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था बट मैंने बाल कटवाए। बट आपका क्या कहना है कि हेयर कट वाकई में ये चीज करता है, बताइएगा 3311063 पर।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive, 106.3 Radio Olive. Bindas. आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजे कशिश और हम में से 73% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खाने का सामान खरीदने से पहले जो है उसे पलट के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. और बस इसीलिए रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव पलट मेरे यार. तो मैंने आज लोगों से पूछा कि क्या आप कुछ खरीदने से पहले पलट के देखते हो.
3: कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करती हूँ तो पीछे पलट के ही नहीं देखती हूँ. मुझे लगता है मार्केट में आया तो सब कुछ अच्छा ही होगा.
4: मैं कभी भी डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेता हूँ तो कभी नहीं देखता हूँ.
2: अब पलट कर देखना क्यों जरूरी है, इस पर बात की हमने हमारी एक्सपर्ट हाला मकूल वर्द से, जो एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है.
5: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मकूल वर्द. आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर. वी डेफिनेटली नीड टू फ्लिप. व्हाई? फर्स्ट द न्यूट्रिशन फैक्ट्स, द क्वांटिटी of nutrients inside, as simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of protein. So this is very important. Simply a lifestyle, you want to minimize the sugar intake. So let us start by reading the nutrition facts. Move with me down to the ingredient list and watch out. The label itself is very tricky. You read on it, sugar free. Does it mean sugar free 100%? No, it's not the case.
2: So what do you think about this activity?
5: Honestly, this is really, really very good. So it's really nice. That will open the eyes of the consumer. It will help them. So small details and every single move or change will be definitely for the better.
2: देखिए, अभी तक तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, अब बारी आएगी आपके स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की. सो अगले एपिसोड में उन्हें भी पलट के देखते हैं.
6: पलट मेरे यार, पलट मेरे यार.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
8: This hour is brought to you by
9: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

भारी भयंकर प्यार में लड़की ये कन्या, इमेजिनेशन देख रहे हो। मुझे कुछ कहने से आप ये गाना सुन रहे हैं। 5:29 आपके साथ एक नंबर गाने हैं इस इवनिंग में। ओए गर्मा गर्म इवनिंग है लेकिन गाने तो ठंडे हैं यार। बट सॉरी इस गाने में बड़ी गर्मी है, कहीं आग लगे लग जावे। ये गाना एक्चुअली ठंडे हवा के झोंके जैसा है। अभी फिलहाल हवाओं के झोंके क्या कहते हैं? मौसम आपके, सुनो मौसम आपके, आज सिमरन के साथ, सुनो। So, मौसम की अपडेट ये है कि 35 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 43 डिग्री सेल्सियस एंड जो ह्यूमिडिटी है वो 30% है एंड विंड जो है वो 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। सो ये है मौसम के हाल। सुंदर ये रेडियो ऑलिव गोल्ड गैदर ये जियो बिंदास। रबी शेरगिल की आवाज में ये गाना सुन के आपको अच्छा लगेगा यार।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Todd with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
1: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million Riyals cash prizes.
2: Jeetne ke 4 raaste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 Riyals growth par paiye ek coupon.
1: Dusra, agar salary 4,000 plus है या 50% save किया है तो आप eligible है.
2: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon और mega draw ticket.
1: Falcon Fitness Health Club की 6th branch grand inauguration हुई एक जबरदस्त celebration के साथ at Binom Ranch. Celebrity guests Shane Nigam, Anna Rajan, Sia Saleem और Roshan Bashir ने मिलकर बनाया इस शाम को truly unforgettable. Falcon Fitness ने शुरू किया एक नया chapter in Doha. अगर आप भी fitness journey को next level ले जाना चाहते हैं, visit Falcon Fitness Binom Ranch. One family, one mission, unstoppable.
3: इसके swag पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
4: This hour is brought to you by
5: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

नीति मोहन की आवाज और ये म्यूजिक और ये क्या ही फिल्म थी यार किक। आई मिस ये वाला सलमान खान यार। 5:49 स्टूडियो घड़ी पे सहेल कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कन एग्जीबिशन, इसका 10th एडिशन है इस बार, हर साल ये होता है एंड बहुत ही कमाल की चीज है, क्योंकि अगर आप कतर में हैं तो फिर आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा टाइम है इसमें, 8th of September से ये स्टार्ट होने वाला है और 12th of September तक ये चलने वाला है। मुझे पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। कटारा कल्चरल विलेज में ये होता है। एंटीकिट्स लेने की कोई जरूरत नहीं, आप जाइए अपने फ्रेंड्स को साथ में लेके जाइए, बट यस इसको एक्सपीरियंस जरूर करिएगा एंड हाइड्रेट योरसेल्फ। पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि वाटर रिमाइंडर हम आप लोगों को देते रहेंगे और आपको बस अपनी बॉटल उठानी है। कोई आपको पानी भर के नहीं भी दे रहा तो खुद उड़ जाओ यार। कर रहे हैं कि तू जरूरी है मुझको जिंदा रहने के लिए। मेरे लिरिक्स ऊपर से नीचे हमेशा हो जाते हैं, फील सारी वहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन मैं गाती भी अच्छा नहीं हूं बट मैं बोल लेती हूँ। ज़बान है अपनी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम आरजेज गा भी लेते हैं, दोस्त ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है। जैसे कि उसमें से हमारा सुदेव है, वो बोलने के साथ साथ गा भी बड़ा अच्छा लेता है यार, सुर अच्छे लग जाते हैं उसके।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
2: टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटूई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ

0: और जो सिमरन के साथ सुन रहे हैं, मैं यही सुन रही हूँ कितना देखिए हाल चाल। 6:05 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। मैंने एक नहीं देखी, एक देखी शायद, दो नहीं देखी, तीन नहीं देखी, चार, मतलब इतनी कितनी क्या डिमांड में है यार ये फिल्म। और एक चीज डिमांड में है, मुझे पता है लोग आजकल बहुत ज्यादा यू नो ऐसा आई लव माचा माचा माचा माचा माचा करते हैं। मेरा भी एक दोस्त है जिसको माचा माचा बहुत ज्यादा कर रहा है वो। लेकिन अब ये क्या है,
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: माचा जो है एक अलग लेवल पे चली गई है। अब लॉन्च हुई है माचा जलेबी विद स्ट्रॉबेरी लस्सी। मैंने अभी ही सोशल मीडिया पे देखा, ये कहाँ बन रही है और कहाँ मिल रही है वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ना ही मैं इसको जानना चाहती हूँ। सो माचा जलेबी क्या आप खाना चाहेंगे? ओ माय गॉड, मेरे को सोच सोच के मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। लेकिन माचा जलेबी विद स्ट्रॉबेरी लस्सी, ब्रो कम ऑन यार, कौन कर रहा है यार। एक तो माचा मेरे को पहले ही पसंद नहीं, एकदम घास फूस जैसा टेस्ट आता है। अब जलेबी को तो स्पेयर कर दो यार। सुंदर हो रेडियो ऑलिव कर के जी बिंदास, क्या आप ये माचा जलेबी खाना चाहेंगे विद स्ट्रॉबेरी लस्सी?

0: बैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

Angie. स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं वर्कशॉप वर्ल्ड कप 2026। जी हाँ, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया वाला जो है एक मौका हो सकता है। 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में ये 19th ऑफ जून को स्टार्ट हो रहा है और 27 जून तक ये चलेगा, शाम 4 से लेके 6 बजे के बीच में। टिकट्स देने की जरूरत नहीं है, वहां पर जो है वो डिजाइन योर फुटबॉल जर्सी जो है ये वर्कशॉप होगी। फिर एक और वर्कशॉप है डिजाइन योर फुटबॉल एंड ट्रॉफी। सो बहुत सारी जो है वो यहाँ पर फन हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव बंदे हैं और आपको ऐसी चीजें करने में, ऐसे वर्कशॉप अटेंड करने में मजा आता है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। 6:15 47 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। कम ऑन,

0: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबा प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: This hour is brought to you by
1: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

of the day. Story of the day. एक्सपायरी डेट देखते हो, पैकेजिंग चेक करते हो, फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलते हो, तो मुबारक हो, आप फूड सेफ्टी के अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर बस इतना याद रखिए, जो फूड सेफ है वही फूड ग्रेट है। टेस्ट कुछ घंटों के लिए याद रहता है, हेल्थ सालों तक। स्टे सेफ, ईट सेफ, लिव सेफ। हैप्पी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे।

0: The best seat is in your home. Stream the FIFA World Cup 2026 on Tot with Talabat Pro. Only for 360 Riyal instead of 849 Riyal. So get ready for every goal. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Experience more with Ooredoo.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: The big biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry.
5: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: This hour is brought to you by
4: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: घर में अपने तरीके से अपने घर को अच्छा फील करवाने के लिए, अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं। इंग्लैंड की बात है, एक बंदी ने क्या किया, अपने घर के बाहर ना एक 4 फीट का गोरिल्ला स्टैचू जो था वो लगा दिया और उसका नाम दे दिया सीजर। अब उसके घर के बाहर ये 4 फीट का गोरिल्ला उसने खड़ा तो कर दिया। अब जब वहां पर मतलब क्या हो गया कि उस स्टैचू से, उस गोरिल्ला के स्टैचू से, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉर्मल नहीं लगता, बड़ी चीज लग रही है, ठीक है। सो वहां की अथॉरिटी ने उनको बोला कि भाई ये आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, और या तो आपको ये स्टैचू हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है वो कम से कम शायद $20,000 जो है वो इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। सो या 4 फीट का गोरिल्ला उसके घर के सामने, उसने बोला भाई ये किसी को काट थोड़ी रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्यों होगी, भाई मेरे घर के बाहर मैंने रखा है। उसके बाद क्या हुआ पूरी स्टोरी मेरे को नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है ये। सुनते रहो रेडियो ओलिव कोर के अंदर जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर Song of the Year. Yeah,

0: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल. ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

हां जी आपको नए डिजाइन की गोल्ड की ऑब्सेशन चढ़ गई है तो एक काम करिए, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स जो है आपकी ये क्या कहते हैं जो पूरी कर सकते हैं डिमांड. ओके सो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज करा लीजिए नए डेजलिंग डिजाइन के साथ, क्योंकि क्या होता है कि समय के साथ वक्त के साथ जब आप चलते हैं ना तो फिर ज्यादा मजा आता है. अपने तरीके से भी आप चल सकते हैं, ओल्ड ज्वेलरी भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको डिजाइन नए वाले चाहिए और आप देखते बोलते वाओ यार पर आपकी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी आप सेम ही डिजाइन पहने जा रहे हो, तो फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करो डिजाइन को. और चाहे आपने कहीं से भी खरीदी हो आप एक्सचेंज करवा सकते हैं सिर्फ मेकिंग चार्जेस जो है वो देकर, एंड उसके साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, इसकी वजह से आप गोल्ड पर 15% जो है वो गोल्ड प्राइजेस पर सेव कर सकते हो. सो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम जाने का प्लान जो है वो फटाफट से कर लीजिए.

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: This hour is brought to you by
3: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: बोल दिया यार। जो पूछना है आज पूछ लो, जो करना है आज कर लो। भाई साहब भारी प्यार है। बहुत सारे लोग जो है ना वो कल जीने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि ये खाना है तो कल खा लेंगे, उससे मिलना है तो कल मिल लेंगे, उससे कहना है तो कल कह लेंगे, यहाँ जाना है तो कल चले जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, हो सकता है ये कल ना हो। एग्जैक्टली एक रिमाइंडर है आपको, इंक्लूडिंग मी, कि जो भी करना है, जो भी कहना चाहते हो, जो भी है आपकी लाइफ में, जो चीज आपको खुशी देती है, जो चीज आपको लगता है कि आपको कह देनी चाहिए, जो चीज आपको लग रहा है कि कर देनी चाहिए, तो कर लो यार। कल की जो है वो वेट ना करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, जो है वो आज है। जितना जीना है आज जी लीजिए, कल जो मिलेगा वो बोनस है आपके लिए। ठीक है, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: 2026 million reals dream.
1: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
0: Jeetne ke char raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
1: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
0: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra coupon. Aur mega draw ticket.
2: आपका अपना घर बेस्ट सीट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026 डॉट पर तलबात प्रो के साथ देखें हर मैच लाइव सिर्फ 360 रियाल इंस्टेड ऑफ 849 रियाल ऑफर लिमिटेड है तो अभी सब्सक्राइब करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: निमेश रेशमिया बवाल गाने आ रही है। आशिक बनाया आपने से आज का वर्ड है पिक मी। ओके सो पिक मी गर्ल, पिक मी बिहेवियर बहुत सारे लोगों का होता है। सो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये एक स्लैंग है, इंटरनेट स्लैंग है जिसको जेंजी लोग जो हैं वो यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सामने वाला जो है वो डेस्परेटली वैलिडेशन की सामने वाले से क्रेव करता है। लाइक पिक मी गर्ल की अगर बात करें तो वो ऐसा है कि लाइक आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स दिस एंड दैट। ओके सो पिक मी बिहेवियर होता है लोगों का, सो या जिसमें उनको लगता है कि बाकी लोग ऐसे ही हैं, मेरा ऐसा है कि भाई मतलब देखो मैं तो सबसे अलग हूँ, मैं तो सबसे डिफरेंट हूँ। पिक मी गर्ल भी होते हैं, पिक मी बॉयज भी होते हैं। सो या 7:30:55 स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है। एक नंबर गाने आपके लिए बज रहे हैं। शाम का टाइम है, क्या कर रहे हो यार बाहर? मुझे पता है बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, वही लोग हैं जिनको जरूरी काम है, अदरवाइज इतनी गर्मी में बाहर कोई नहीं निकलता है। तो आप अभी क्या कर रहे हो? अपनी गाड़ी में बैठे हो, कड़क पी रहे हो, या फिर किसी दोस्त से मिलने जा रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि यार खाना आज बाहर खा लिया जाए, क्या कर रहे हो? 3311063 पे बताओ।
1: मेरे दिल जिगर से गुजरी है, एक लड़की इधर से गुजरी है।
0: और

वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं रेडियो पर, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो, आप डिजर्व करते हो कि आपका नाम लिया जाना चाहिए, तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं आपको बताऊंगी। आप अपना नाम टाइप करके रखो बस।

விரதில் சியாபி கானா சொல்றேன். ஹை सोनियों की तरह की हलचल सच रही है गाल सिमरन कौर थोड़े नाल बिना देर लगाए आप लोगों के नाम लेते हैं यार. चलो अब जितने भी मेरे लिसनर्स हैं जो रेडियो ऑलिव के फैंस हैं या फिर सिमरन कौर के फैंस हैं जो कि उसको सुन रहे हैं, आप क्विकली अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करिए. मैंने मेरी चेयर घुमा ली है मेरे व्हाट्सएप के सिस्टम की तरफ, जहां पर बड़ी सी स्क्रीन पे बड़ा सा व्हाट्सएप है, बड़े सारे नाम आप लोगों के दिखने वाले हैं. बट एक ही शर्त है कि सिर्फ और सिर्फ आपने नाम लिखना है, ना हाई लिखना है ना हेलो लिखना है. अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ. मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3. ओके चलो अब मैं नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ. वसीफ, फुरकान अली, मिस्टर वरिंदर, वेरोनिका, आसमा, युगल, अकरी, दिपिन, सुमित, फायरा चांद, दानिश शेख, मकसूद, सफदर, मोहम्मद यूसुफ, शिवा. ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो बोल चुकी हूँ. सिर्फ और सिर्फ नाम लिखिए 3311106 3 पर. सलाम मत लिखिए दोस्त, वालेकुम सलाम, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नाम पे कॉन्सेंट्रेट करना है. हरमन जी थैंक यू सो मच, राम प्रसाद जी थैंक यू सो मच, खिजर हयात जी थैंक यू सो मच, रमनप्रीत जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. हे मत लिखिए, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखिए दोस्त, और इमेजिनरी नेम मत लिखिए. सुदीप जी, इस्लाम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. रमनप्रीत, मैं ऑलरेडी आपका नाम ले चुकी हूँ. गुरांश जी थैंक यू सो मच, बिल्लू जी थैंक यू सो मच, पंकज जी थैंक यू सो मच, निर्वी जी थैंक यू सो मच, रहमान जी थैंक यू सो मच, सज्जाद जी थैंक यू सो मच, जयान अली जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, अराफत जी थैंक यू सो मच. अगर मेरा हाल पूछ रहे तो उसका जवाब अभी नहीं दे सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नाम पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा. रिबू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, शिवा जी थैंक यू सो मच, करम जी थैंक यू सो मच. अब जिन जिन लोगों के नाम ले लिए अब आप थैंक यू लिखिए और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेजिए. हाय हाय हाय क्या गाना आया दोस्त. ओवर थिंकिंग कर लो 4 मिनट 38 सेकंड के लिए, फिर वापस लौट आना क्योंकि ये गाने की ड्यूरेशन है. 2, 1 एंड गो.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive 106.3 Radio Olive Geo Bindas. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
1: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
2: Hi, this is Ajay Devgan.
3: Hi, this is Akshay Kumar.
4: Hi, this is Anushka Sharma.
5: And I'm Ashwin Vasi.
6: This is Ranveer Singh. Stay tuned. 106.3 Radio Olive
7: Jio Bindas. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ.
8: This hour is brought to you by
0: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.

0: म्यूजिक भी बढ़िया बन गया यार, है ना। म्यूजिक जो है ना वो किसी भी फिल्म की जान होती है यार, कि आपने जरा सा म्यूजिक सुना और आपको लगे अरे यार ये तो उसी फिल्म का गाना है, राइट। आपके प्यार में हम संवरने लगे। अब टाइम आ चुका है कि आप लोग भी गाना पहचानिए, क्योंकि एक चुटकी सॉन्ग हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: चलो अब मैं आपको एक चुटकी सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहे, लेकिन ध्यान से सुनिए, बताइए कौन सा गाना है। ओ माय गॉड, एक बार वापस से सुना रही हूँ, ठीक है ध्यान से सुनो, बताओ ये कौन से गाने का जो है वो म्यूजिक है। एक चुटकी सॉन्ग को पहचानने के लिए और जवाब देने के लिए आपको क्या कर रहेंगे, आपने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है, प्लीज मुझे लिख के मत भेजिएगा। सो हे सिमरन, अपना नाम बताइए और गाना गाना चाहे तो गा दीजिए, बताना चाहे तो बता दीजिए, अप टू यू। 3311063 पे भेज दीजिए यार।
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है ये बात है।

0: लोगों के लिए थोड़ा सा काम जो है वो मुश्किल हो गया। मैं गरीब सुने हो कितना की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग में ये सुनाया था मैंने आपको और ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं लगा है। ओके फाइन, सो एक काम किया करो, जब मैं एक चुटकी सॉन्ग प्ले करती हूँ ना, तो आप अपना रिकॉर्डर ऑन कर लिया करो ताकि आप 3-4 बार उसको सुन सके और अगर थोड़ी सी टफ लग भी रही है तो भी आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि ये कौन सा गाना है। सो देखिए, 3 लोगों ने सही पहचाना, सिर्फ 3 लोगों ने आज सही पहचाना, लेकिन उन्होंने मुझे वॉइस नोट नहीं भेजा, उन्होंने लिख के भेजा, तो मैं आप लोगों के नाम भी नहीं लेने वाली हूँ। सो या थैंक यू सो मच। जब भी आप पार्टिसिपेट करें इसमें आपको वॉइस नोट भेजना है, तभी मजा है यार। तो गाना ये है।

0: बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए. बट वॉइस नोट भेजा करो यार.
1: तेरी चाहत के दीवाने हुए हम
0: पर तेनू

0: Story of the day. Story of the day. एक्सपायरी डेट देखते हो, पैकेजिंग चेक करते हो, फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलते हो, तो मुबारक हो, आप फूड सेफ्टी के अनऑफिशियल एम्बेसडर हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर बस इतना याद रखिए, जो फूड सेफ है वही फूड ग्रेट है। टेस्ट कुछ घंटों के लिए याद रहता है, हेल्थ सालों तक। स्टे सेफ, ईट सेफ, लिव सेफ। Happy World Food Safety Day. Story of the day.
1: Story of the day. You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: This hour is brought to you by
6: Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: On the number one.

ਮਾੜੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਆਪ ਕੇ ਸਾ पूरे दिन फिर शोज का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा सो आप लोगों के लिए 24/7 बॉलीवुड म्यूजिक जो है वो ऑन है अभी के लिए अपन जो है वो कल शाम को जबरदस्त इवनिंग्स को 5 बजे ऑन करने वाले हैं तो इंतजार करिएगा मेरा खाने पीते रहो ऐश करते रहो चेहरे वे वाली स्माइल रखो किसी का दिल मत दुखाना बी नाइस टू एवरीवन यार गुड नाइट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो रेडियो

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

से बात शुरू करते हैं। एक मैसेज, बस एक मैसेज हम मैसेज भेजते हैं और फिर वेट करते हैं। फोन को उठा कर देखते हैं, रखते हैं, सीधा करते हैं, फिर चेक करते हैं और फिर सीन। बस एक वर्ड, रिप्लाई नहीं, रिएक्शन नहीं, सिर्फ सीन। और अजीब बात यह है कि कभी कभी एक सीन हमें नो से भी ज्यादा ना बुरा फील करा देता है। क्यों? क्योंकि वो नो में क्लैरिटी होती है, लेकिन सीन में पॉसिबिलिटीज होती है। शायद बिजी होगा, शायद बाद में रिप्लाई करेगा, शायद कोई गुस्सा है, शायद इंटरेस्ट ही नहीं है, और फिर हम खुद ही पूरी कहानी लिख देते हैं। सो इसे कहते हैं इंसान अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा परेशान होता है। सच चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब हमें सच नहीं पता होता, हम अपने दिमाग में उसकी कहानी बना लेते हैं, और कभी कभी वो कहानी रियलिटी से ज्यादा पेनफुल होती है। तो आज रात का एक सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स ने कम्युनिकेशन को इजी बनाया है या इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड? और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई इमोशंस को ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, या फिर आप खुद वो इंसान हैं जो मैसेज देख कर रिप्लाई बाद में करते हैं। मैसेज भेजिए और रात को बात करते हैं हम सबके डिजिटल जिंदगी से एक छोटे से वर्ल्ड की, विच इज सीन। सो ये सीन देखने के बाद जो बुरा फील होता है ना, ट्रस्ट मी आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स यार, मेरे साथ भी होता है। सो आज बहुत सारी ऐसी बातों के साथ शुरू करते हैं मिडनाइट लाउंज। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो आज एक अजीब सा सवाल पूछती हूँ, क्या हम सच में बिजी हैं या हमें फ्री रहना आता ही नहीं है, हम भूल गए हैं। कभी आपने नोटिस किया है जब हम एक दिन कुछ नहीं करते तो थोड़ा गिल्ट सा फील होता है, जैसे वीकेंड पे यूजुअली सबको फ्राइडे और सैटरडे मिलता है। अब जैसे ही आज संडे आया सबको लगा कि भाई अपने अपने काम पे लग जाओ। अगर कोई फ्री है तो उसे गिल्ट आता है यार, लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए था, कुछ अचीव करना चाहिए था, कहीं पहुंचना चाहिए था। और शायद इसी वजह से आज की दुनिया में बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर कोई पूछे कैसे हो तो हम कहते हैं कि यार बहुत बिजी हूँ। अजीब बात यह है कि हम उस बात पर थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं, लेकिन इंसान मशीन नहीं है। रेस्ट जो है वो लग्जरी नहीं है, रेस्ट नेसेसिटी है। हो सकता है कि आपकी बॉडी थकी हुई ना हो लेकिन आपका दिमाग थक चुका होता है। आज रात का मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आप आखिरी बार बिना गिल्ट के कब बैठे थे, बिना फोन के, बिना किसी टारगेट के, बिना किसी प्रेशर के, बस खुद के साथ। मैसेज कीजिए, बताइए मुझे 3311063 पर, क्योंकि हो सकता है कि हमें बिजी रहने की नहीं कभी कभी रुकने की जरूरत है। सो आज अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो या बस गाड़ी में बैठकर गाने एंजॉय कर रहे हो तो ये बात आपके लिए है कि जरूरी है एंजॉय करना। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

तो चलिए आज थोड़ा सा कुछ इमेजिन करते हैं, कल सुबह आप उठे और पैसे की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, बिल्स की टेंशन नहीं है, ईएमआई की कोई टेंशन नहीं है, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है, बस एक सवाल है कि आप क्या करोगे। इंटरेस्टिंग बात ये है, इस सवाल का जवाब आपके बैंक अकाउंट के बारे में नहीं है बताना, या आपके दिल के बारे में बताना है। कुछ लोग कहेंगे ट्रैवल, कुछ कहेंगे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और कुछ कहेंगे कि यार बिजनेस करना था, और कुछ लोग शायद ये कहेंगे कि मैं वैसे ही जीऊंगा जैसे आज जी रहा हूँ। सो आप क्या करोगे अगर ये सारी टेंशन खत्म हो जाए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। सो क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि पैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मतलब अगर आप बहुत अच्छा सा कुछ कमा लोगे, बहुत ज्यादा आपके पास कुछ आ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक ऑप्शन देता है, पर्पस नहीं देता। सो आज का सवाल बहुत आसान है, 3311063 इज माई नंबर। अगर मनी प्रॉब्लम ना होती तो आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले क्या बदलते, फटाफट से मैसेज भेजिए, हो सकता है आपका जवाब किसी और को अपने असली सपने को याद दिला दे। सो 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

आप जब भी किसी से पूछोगे ना कि आपके पास सबसे एक्सपेंसिव चीज कौन सी है, तो वो बोलेंगे या तो फोन या कोई कार या फिर कोई प्रॉपर्टी या कोई ज्वेलरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके पास एक चीज है जो इनसे कहीं ज्यादा महंगी है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज, और वो है पीस ऑफ माइंड, सुकून, ट्रस्ट, हेल्थ, वक्त। ये सब हम सबके पास है, बस किसी के पास थोड़ा कम, किसी के पास थोड़ा सा ज्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास हेल्थ है, अगर आपके पास ट्रस्ट है, अगर आपके पास लॉयल रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपके पास सुकून है, पीस ऑफ माइंड है, तो आप सबसे ज्यादा रिच हो। आज की दुनिया में लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन नींद खो रहे हैं, लोग फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं लेकिन दोस्त कम हो रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं लेकिन घर वालों के साथ वक्त कम है। तो सवाल फिर वही है कि आपके पास सबसे महंगी चीज क्या है, और क्या आप उसी चीज की हिफाजत उतनी ही करते हैं जितनी आपने अपने बैंक अकाउंट की है। कभी कभी जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज है ना, वो नहीं होती जिनकी कोई मार्केट वैल्यू होती है। आज रात थोड़ा सा सोचिए और बताइए मुझे 3311063 पर कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो खो गई तो पैसे से वापस नहीं आ सकती। सो 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

में बात करते हैं जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी. क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि भाई ऐसी कौन सी एक्सपेंसिव चीज है आपके पास, तो सबने बोला कि नहीं यार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं और जो खरीदी नहीं जा सकती, मतलब जिन्हें आप किसी अमाउंट से नहीं खरीद सकते. सो इसी किताब की मुझे याद आई तो फिर मैंने सोचा चलो इसी किताब के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी. सो ये बुक आपको लगता है कि नाम से किसी पैसे के बारे में है, बट नहीं, ये किताब इंसान के बारे में ज्यादा है और पैसे के बारे में कम. ऑथर जो है मॉर्गन हॉसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से काम नहीं चलेगा. मतलब इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, बिहेवियर का गेम है. सिंपल लैंग्वेज में दो लोग सेम सैलरी कमा सकते हैं लेकिन उनकी जिंदगियां जो हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं. क्यों? क्योंकि मनी के साथ हमारे रिश्ते और नंबर्स जो हैं वो अलग होते हैं. इमोशंस से बनता है ये रिलेशन. किसी ने बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा होता है इसीलिए वो सेव करता है, किसी ने कमी नहीं देखी होती इसीलिए वो फ्रीली स्पेंड कर रहा होता है, और दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, कोई गलत या कोई सही नहीं है. इस किताब का सबसे पावरफुल लेसन जो है वो शायद ये है कि वेल्थ और लुकिंग वेल्दी में बहुत फर्क होता है. जो लोग अमीर दिखते हैं जरूरी नहीं है कि वो हैं भी, और जो सच में सिक्योर होते हैं कि जरूरी नहीं कि वो दिखावा करें. सो बहुत ही अच्छा सवाल था, जब मुझे ये किताब पढ़ के बहुत मज़ा आया तो मैंने सोचा कि यार इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है, ये शायद हम किसी स्कूल की किताब या किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज की किताब से तो नहीं सीख सकते. सो पैसे को लेकर आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेसन किसने सिखाया है, आपके पेरेंट्स ने या लाइफ ने? 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Geo Bindas.

चलिए मिडनाइट लाउंज में दो तरह की बातें करते हैं, सच की और झूठ की। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये झूठ हम सब कभी ना कभी खुद से बोलते हैं कि मैं खुश हो जाऊंगी कि अगर मेरा प्रमोशन हो गया, जब अपना घर बन जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, जब वेट कम हो जाएगा तो पक्का मैं बहुत खुश रहूंगी, जब बैंक बैलेंस थोड़ा सा अपने टाइप का हो जाएगा तब मैं बहुत खुश रहूंगी, जब कोई परफेक्ट इंसान मिल जाएगा जिंदगी में तो फिर पक्का सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक नया जब आता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं अराइवल फैलेसी, यानी हमें लगता है कि किसी एक डेस्टिनेशन पर पहुंचकर हम परमानेंटली हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती बॉस, क्योंकि खुशी कोई स्टेशन तो है नहीं, खुशी कोई ट्रैवल कंपेनियन तो है नहीं, वो रास्ते में मिलती है, एक कप चाय में, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन में, एक अच्छे मैसेज में, एक गाने में, एक सुकून भरी नींद में। और आज का मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आप कौन सा जब लेकर बैठते हो कि जब ये हो जाएगा या जब वो हो जाएगा, कौन सा जब है वो जिस खुशी की आप इतने इंतजार में बैठे हो ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपके पास आज भी है। सो बताइए मुझे कि ऐसे कौन से सपने हैं जो आपको लगता है कि पूरे हो गए तो सब कुछ सेट हो जाएगा। 3311063 इज माई नंबर और यहाँ पर मैं सारे मैसेजेस खुद से पढ़ रही हूँ अभी। सो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप कीजिए, बताइए 3311063 पर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Yeah, Midnight Lounge.
2: Yeah, Midnight Lounge.
3: एवरीवन, मैं हूँ आरजे कशिश और हम में से 73% लोग ऐसे हैं जो कभी भी खाने का सामान खरीदने से पहले जो है उसे पलट के नहीं देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और बस इसीलिए रेडियो ऑलिव का ये इनिशिएटिव पलट मेरे यार। तो मैंने आज लोगों से पूछा कि क्या आप कुछ खरीदने से पहले पलट के देखते हो?
4: कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करती हूँ तो पीछे पलट के ही नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है मार्केट में आया तो सब कुछ अच्छा ही होगा।
5: मैं कभी भी डेली नीड के प्रोडक्ट्स लेता हूँ तो कभी नहीं देखता हूँ।
3: अब पलट कर देखना क्यों जरूरी है, इस पर बात की हमने हमारी एक्सपर्ट हाला मकूल वर्द से, जो एक फूड सेफ्टी एक्सपर्ट है।
6: हेलो एवरीवन, माय नेम इज हाला मकूल वर्द, आई एम द फूड सेफ्टी मैनेजर एट बॉयकर पब्लिक सेफ्टी कतर। वी डेफिनेटली नीड टू फ्लिप। व्हाई? फर्स्ट, द न्यूट्रिशन फैक्ट्स, द क्वांटिटी of nutrient inside, as simple as carbohydrate, the sugar, the fat, quantity of protein. So this is very important. Simply a lifestyle, you want to minimize the sugar intake. So let us start by reading the nutrition facts. Move with me down to the ingredient list and watch out. The label itself is very tricky. You read on it, sugar-free. Does it mean sugar-free 100%? No, it's not the case.
3: So what do you think about this activity?
6: Honestly, this is really, really very good. So it's really nice. That will open the eyes of the consumer. Yeah. It will help them. So small details and every single move or change will be definitely for the better.
3: देखिए, अभी तक तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स की बात करी है, अब बारी आएगी आपके स्किन केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की। सो अगले एपिसोड में उन्हें भी पलट के देखते हैं।
1: पलट मेरे यार।
0: This hour is brought to you by
7: Homestar Us. We complete your home.

So, मुझे ऐसा लगता है कि कतर में रहने वाले हर उस इंसान के पास एक कहानी होती है और उस कहानी का एक चैप्टर बहुत स्पेशल होता है। पहली सैलरी अमाउंट याद हो ना हो, वो फीलिंग सबको याद होती है। पहली बार अकाउंट में सैलरी आई थी और उस दिन लग रहा था कि दुनिया जीत ली है। किसी ने अपनी मदर के लिए पहले सूट खरीदा, किसी ने फादर के लिए पहले वॉच खरीदी, किसी ने घर जोड़ के पैसे भेजे और फिर किसी ने अपने लिए फ़ोन लिया और किसी ने अपने लिए कुछ अलग यू नो करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने बस एटीएम स्लिप को बार बार देखा कि यार अमाउंट तो आ गया है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसे नहीं थे, उसमें सिर्फ एक अमाउंट नहीं था, उसमें थी मेहनत, इंतज़ार था, सपने थे और घर से दूर गुजरे हुए वो दिन थे जब आपको लग रहा था कि घर से दूर जाकर क्या होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पहली बार यू नो अपने घर से इतना दूर आई, वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अलग अलग जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में काम कर चुके होते हैं, बट एक डिफरेंट कंट्री में मूव करना एक डिफरेंट फीलिंग है। और आज जब मैं उस फीलिंग के बारे में सोच रही थी, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग हेयर, तो मुझे लगा कि भाई इसके बारे में बात करना तो बनता है। सो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले आपने किसको याद किया था जब आपको यू नो आपकी पहली सैलरी मिली थी, क्योंकि कभी कभी पहली सैलरी की वैल्यू ना अमाउंट में नहीं होती, उस एहसास में होती है जब अपने पैरों पर आप खड़े हो जाते हो ना, आपको लगता है कि ये अमाउंट अब धीरे धीरे बढ़ने वाला है। सो बताओ मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

और देखते ही देखते मेरे जाने का वक्त हो गया भाई। इतने खूबसूरत गाने सुनाए ना मैंने आज आपको, इतने सारे मैसेजेस पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। आज की रात भी आपने आखिरी मोड़ पर जो है वो आप पहुंची है। आने से पहले एक आखिरी थॉट जो है वो ये है कि हम अक्सर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कितना कमाएंगे, फ्यूचर में कहाँ होंगे, लेकिन एक सवाल हम कम पूछते हैं कि आज जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या उसके लिए फ्यूचर वाला मैं मुझे थैंक यू कहेगा। क्योंकि हम कहते ही नहीं ना खुद को थैंक यू, हम कितना भी आगे निकल जाएं पर हमेशा कहते हैं कि यार ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। शायद आप आज अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, शायद आप पैसे सेव कर रहे हो, शायद किसी रिलेशनशिप को संभाल रहे हो, शायद किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और शायद रिजल्ट अभी नजर भी नहीं आ रहा। लेकिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या है, कई बार आज की छोटी सी मेहनत कल की बड़ी सी मुस्कुराहट बनकर आती है। सो आज सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, और ऐसा क्या है जो आप आज कर रहे हो जिसके लिए 5 साल बाद वाला आप दिल से शुक्रिया कहेगा, और फिर याद रखिएगा कि आपने कितनी मेहनत की थी इस दिन के लिए। फॉर नाउ आई हैव टू से गुड नाइट कतर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान। कल मिलते हैं सेम टाइम पर रेडियो ऑलिव में, सिर्फ और सिर्फ मिडनाइट लाउंज लेकर। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ.
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे पिंदस मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Radio Olive,

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.